0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: शिव शिवेति शिवेति शिवेति वा भव भवेति भवेति भवेति वा हरा हरेति हरेति हरेति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरं भज मनः शिवमेव निरन्तरं।

वसावे स्वाहा हर्पता ये स्वाहा अह्ने मुग्धा च स्वाहा मुग्धाया वैनज्ञाशिना च स्वाहा विनज्ञाशिना आन्त्यायना च स्वाहा अन्त्याय भुवना च स्वाहा भुवानस्य पता ये स्वाहाधिपतये स्वाहा आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताग्श्रोत्रैर्यज्ञेन कल्पताम् पृष्ठैर्यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् जाय

0: అనుజ్జేషం విష్ణు స్త్రియక్షరేణ త్రీణిమాల్లోకానుదాజయత్తానుజ్జేషజ్ఞ సోమశ్చతురక్షరేణ చతుష్పదః పశూనుదాజయత్తానుజ్జేషం పూషా పంచాక్షరేణ పంచారుతూనుదాజయత్తానుజ్జేషజ్ఞ సవితాశలక్షరేణ షల్రుతూనుదాజయత్తానుజ్జేషం మరుతః సప్తాక్షరేణ సప్తగ్రామ్యాన్ పశూనుదాజయజ్ఞస్తానుజ్జేషం బృహస్పతిరష్టాక్షరేణ గాయత్రీముదాజయత్తాముజ్జేషం మిత్రోణవాక్షరేణ త్రివృతజ్ఞస్తోమముదాజయత్తముజ్జేషం వరుణో దశాక్షరేణ విరాజముదాజయత్తాముజ్జేషం ఇంద్ర ఏకాదశాక్షరేణ త్రిష్టుభముదాజయత్తాముజ్జేషం విశ్వే దేవాద్వాదశాక్షరేణ జగతి ముదాజయజ్ఞస్తాముజ్జేషం వసావస్త్రయోదశాక్షరేణ త్రయోదశగ్యస్తోమముదాజయజ్ఞస్తముజ్జేషజ్ఞ రుద్రాశ్చతుర్దశాక్షరేణ చతుర్దశగ్యస్తోమముదాజయజ్ఞస్తముజ్జేషం ఆదిత్యాః పంచాదశాక్షరేణ పంచదశగ్యస్తోమముదాజయజ్ఞస్తముజ్జేషమదీతిషోళశాక్షరేణ షోళశగ్యస్తోమముదాజయత్తముజ్జేషం ప్రజాపతిః సప్తదశాక్షరేణ సప్తదశగ్యస్తోమముదాజయత్తముజ్జేషం ఇతి దశమోధ్యాయః. ఓం
1: ఓం నమః శివాయ. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Sabhi ko dikhta tha. घर में जिसको भी दिखाई पड़ता था कि इसने मल किया मूत्र किया. आजकल की माताएं तो डायपर लगा देती हैं और उसके ऊपर से उसको कपड़ा लगा देते हैं और वो मल भी करेगा तो दिन भर भले ही उसी में पड़ा रहेगा, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा. उसने मल किया कि नहीं किया तो तब, लेकिन मां को पता चल जाता है, गोद में लेने वाली को उसका दुर्गंध तो आ ही जाता है ना. मल हो और दुर्गंध ना हो, मां समझती है. लेकिन वो प्रतीक्षा करते हैं कि घर पहुंचे तो डायपर चेंज करें, तब तक वो ढोते हुए फिरती रहेगी. संसार मल ही हमारे जीवन का दुर्गंध है. देख लो ये संसार है, ये संसार मल ही हमारे जीवन में दोष बनकर बैठा हुआ है. और जब तक ये जीवन में मल रहेगा, आपने देखा है, आप तो मां बने हो, आप तो पिता बने हो, आप तो गृहस्थ हो, हम सन्यासी को क्या पता भाई ये सारी चीज. लेकिन शंकराचार्य जी को सब पता है, वो तो सर्वज्ञ है ना. लोग कहते हैं महाराज आपने तो संसार किया नहीं, गृहस्थी किया नहीं, गृहस्थी की सारी बात आप कैसे जानते हो, हमसे आकर पूछते हैं है? तो हम बताते हैं कि भाई तुम लोगों के बीच में रहते हैं, तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं, तो हमको पता ही है. तुम ही लोग रोते हुए बताते हो हु? बच्चा, छोटा बच्चा जब तक मल में या मूत्र में डूबा रहेगा तब तक वो बच्चा रोता ही रहता है. ये तो आप लोगों ने अनुभव किया है. उसके रोने से ये पता चल जाता है मां को कि इसने जरूर मल मूत्र त्याग किया है. क्यों नहीं तो क्यों रोता, अभी अभी दूध पिला दिया है, फिर क्यों रोना है. जरूर मल किया है, मूत्र किया है, उसकी सफाई करनी जरूरी है. तुरंत फिर उसकी सफाई करती है, सफाई कर देती है तो फिर बच्चा बड़ा आनंद से सो जाता है. ये संसार मल से हम रच पच हुए हुए हैं, इसीलिए जब तक ये मल की सफाई नहीं होगी तब तक हमारा रोना बंद नहीं होगा। हो जीवात्मा का रोना तब तक बंद नहीं होगा। कब तक? जब तक संसार मल की निवृत्ति नहीं होगी। ये रोना पड़ने का कारण ही तो यही है, और क्या है? और इस मल की सफाई होगी कब? कौन करेगा? भक्ति जननी। शंकराचार्य जी कहते हैं उसकी सफाई करने वाली तो एक ही मां है, वह है भक्ति जननी। कैसे करेगी वो सफाई? उसको नलाएगी या धोएगी? कौन सा पानी से धोएगी? आनंद्राश्रु। भक्त जिस समय भक्ति की साधना करता है उसमें भक्ति का उद्रेक होता है उसके हृदय में, तो उसी के शरीर से उनके आंखों से जो अश्रु धारा गिरते हैं मानो कि उसके जीवन के मल रूपी दोष को धोने के लिए भक्ति ने पानी गर्म करके तैयार किया है। भाई क्या सुंदर भाव है इसमें। आनंदाश्रुभिरातनोति पुलकम् नैर्मल्यतच्छादनम्। और उस भक्ति से प्रक्षालित विशुद्ध वस्त्र का निष्काम कर्म रूपी वस्त्र से दोष रहित कर्म रूपी वस्त्रों का भक्ति उस बालक भक्त रूपी अर्भक को छादनम आच्छादनम, ये नैर्मल्यता आच्छादनम उड़ा देती है कपड़ा, नलाने के बाद तुरंत गर्म कपड़ा उड़ा देती है मां बच्चों को, बढ़िया शुद्ध स्वच्छ कपड़ा, शुद्ध कपड़ा उस बच्चे को उड़ा देती है। उसके बाद नलाने के बाद कपड़ा पहनाए बिना कपड़ा उड़ाए बिना मां दूध नहीं पिलाती है। पहले नलाती है, नहा धोकर उसके दोष मल सब हट जाता है तो तुरंत उसको निर्मल वस्त्र पहनाती है, शुद्ध धोए हुए कपड़ा पहनाएगी, फिर उसके बाद गोद में लेकर उसको दूध पिलाती है। भक्ति मां दूध पिलाएगी। हमारी मां ने भी ऐसे ही किया था, आपकी मां ने भी ऐसे ही किया था, भक्ति मां भी ऐसे ही करेगी। भक्ति मां कौन से दूध पिलाएगी, कैसे दूध पिलाएगी? आजकल के संदर्भ में यह दृष्टांत ठीक जच रहा है। वो पहले तो हमारी मां ने हमको स्तनपान कराया था, और आजकल की मां तो स्तनपान नहीं कराती है, बोतल पान कराती है। और बच्चा जब पैदा हुआ तभी से बोतल पान करता है, तो बूढ़ा होने के जवान होने के बाद जब दारू पीने लगता है तो मां आकर रोती है, महाराज मेरा बेटा दारू पी रहा है उसको समझाओ ना। अरे मां तुमने उसको बचपन में ही बोतल पकड़ा दिया है तो क्या करेगा वो। संस्कार की बात है, संस्कार की बात है, वो बोतल से प्रेम करेगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने बार बार कहा है, बच्चे को गर्भ से ही संस्कार देनी चाहिए। और आज का संस्कृति क्या बोलता है, किसी भी बच्चों को ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो करे उसको करने दो, रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, फ्रीडम स्वतंत्रता खुला छोड़ो, डांटो नहीं, रोको नहीं, टोको नहीं। परिणाम क्या होता है? गर्भ में रहते हुए ही उसका संस्कार हमने बिगाड़ चुके हैं। हमारा अध्यात्म शास्त्र वैदिक सनातन धर्म तमाम शास्त्रों से भरा पड़ा है, तमाम उदाहरणों से भरे पड़े हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल न कुरान में है न बाइबिल में है। मां के गर्भ में ही बच्चों को संस्कार देनी चाहिए, ये उदाहरण हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों में ही भरे पड़े हैं, और ऐसा दृष्टांत न बाइबिल में है न कुरान में है, किसी भी दुनिया का और शास्त्र में नहीं है। हमारा तो उदाहरण है, अभिमन्यु को सारी धनुर्विद्या चक्र व्यूह भेदन करने की शिक्षा मां के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। जन्मने के बाद दीक्षा नहीं दी, शिक्षा नहीं दी है, गर्भ में रहते ही प्राप्त हो गया था। आप लोगों ने महाभारत पढ़ चुके हो, सुना है, देखा है, ये प्रसंग से आप लोग परिचित हो। अर्जुन जब गुरु द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र सीखकर आता था और उसको पता था कि मेरा बेटा उसके गर्भ में है, तब उसको आगे रखकर अर्जुन आज दिन भर क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, वो सारी बात अपनी पत्नी को सुनाता था। पत्नी को इसलिए सुनाता था कि मेरा बेटा उसके गर्भ में जो है ना वो सीख जाए, समझ जाए। और हुआ यही, मां की गलती से अभिमन्यु को मरना पड़ा हो, समझ गए कि नहीं? उसको यदि महाभारत में चक्रव्यूह में फंसकर मरना पड़ा तो वो मृत्यु का कारण कौन है? उसकी मां है। ये तो आप समझ रहे हो ना? हुआ क्या था, चक्रव्यूह भेदन करने की कला तो वो सीख चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी सावधानी पूर्वक सुन रही थी और पेट के बच्चे ने वो सब कुछ सुन रहा था, वो ज्ञान उसको गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की बात सुना रहा था अपनी पत्नी को, उस समय उस बच्चे की मां सो गई, वो नहीं सुन पाई। परिणाम क्या हुआ, कैसे निकलना है वो नहीं जान पाया, कैसे घुसना है, चक्र भेदन करके अंदर घुसना कैसे, ये तो वो जान गया था गर्भ में ही, लेकिन वहां से कैसे निकलना है ये विद्या उसको प्राप्त नहीं हो पाया। किसके चलते नहीं हो पाया? उसकी मां के चलते। कैसे? क्योंकि वो सो गई। बता रहा था अर्जुन, वो सो गई। मां तो केयरलेस है, और हमारी मां जब केयरलेस होती है तो बच्चे उद्दंड पैदा होते हैं। तो आज ये संस्कार जरूरी है। हम बार बार कहा करते हैं कि शिक्षा की बात करते हो तुम, विश्व ये मानता है कि दुनिया में कोई भी निरक्षर न हो, सब साक्षर हो, सब शिक्षित हो, और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन किसी ने भी संस्कार देने की योजना नहीं बनाई है। संस्कार देने की योजना ना हम घर के लेवल में करते हैं, ना सरकार राज्य के लेवल में करता है, ना राष्ट्र देश के लेवल में करता है, ना विश्व समस्त जनमानस के लेवल में करता है। संस्कार एक अनिवार्य जरूरी चीज है, ये किसी के आजकल के किसी भी नीति निर्धारकों के दिमाग में ये बात नहीं आई है। परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है? शिक्षित तो हो रहे हैं, जो जितनी शिक्षित हो रहे हैं वे सब उद्दंड शिक्षित हो रहे हैं, अधूरे शिक्षित हैं। शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी तब जब तक कि संस्कार से युक्त न किया जाए। ये हम प्रवचनों में हमेशा कहा करते हैं, लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? तुम लोग सुनने आते हो, तुम सब कठोपनिषद के गाई बने हो, समझ गए कठोपनिषद के गाई है? नहीं मालूम कठोपनिषद की गाय है? दूध नहीं देती इतनी नहीं, घास भी नहीं खाती है, दूध नहीं देती है, घास नहीं खाती है, इतना ही नहीं है। पीतो दका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। आप लोग से इंद्रिय हो, अब निरेंद्रिय हो गए। अब आप लोग में से कोई भी किसी के पास योग्यता है बच्चा पैदा करने की? निरेंद्रिय पीतो दका जगदत्रिणा दुग्ध दोहा निरेंद्रिया। उद्दालकारुणी वाजस्रवा, अपने यज्ञ की सफलता के लिए ऐसे ऐसे बूढ़ी बूढ़ी गायें बड़ी मुश्किल से चल सके, ऐसे गायों को ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जा रहा था। नचिकेता ने पकड़ लिया अपने बाप के हाथ, पिताजी ये गायों को कहां लेके जा रहे हो? वाजस्रवा उद्दालक ने आरुणि ने कहा, बेटा मैंने यज्ञ किया है विश्वजीत, उस यज्ञ की आज पूर्णाहुति है और उस यज्ञ में ये सब गायें ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जा रहा हूं। नचिकेता ने कहा, बेट पिताजी ये तो पीतो दका, पानी जितना पीना था पी लिया, अब तो पानी पीने की भी क्षमता नहीं है इनमें। पीतो दका जगद तृणा, जितना घास खाना था उन्होंने खा लिया, अब तो घास खाने की भी क्षमता, मुख में दांत नहीं है, हम लोगों के हैं चौकटा लगा रखा है, बेचारे वो गायों को कहां से चौकटा लगाएंगे भाई, हैं? उन गायों के दांत को कौन लगा देगा? बेचारे जो गिर गए गिर गए। जगत तृणा दुग्ध दोहा, दूध जितना देना था दे चुके हैं, अब तो खून ही नहीं उनके शरीर में, तो दूध कहां से आएगा? निरिंद्रिया, अब ब्याहने की संभावना ही नहीं है, पुनः गर्भाधान करके फिर ब्याहेंगे फिर दूध देंगे, ये कल्पना ही खत्म। अनंदा नामते लोका तांस सा तान ददाती ता ददत, ऐसे गायों को दान में देने वाला व्यक्ति आनंद रहित अनंद नाम के लोक में मरने के बाद जाएगा। पिताजी कर क्या रहे हो, किधर हो? बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय कहां है? क्या तुम्हारे गोठ में बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय नहीं है? है बेटा, फिर कहां है? बोले वो तो तुम्हारे लिए रखा है, मर गए। ऐसे मोह में पड़े रहोगे तो कहीं विश्वजीत यज्ञ सफल होगा? नचिकेता ने सोचा कि मेरा बाप मेरे कारण से नरक जाने वाला है, मेरे कारण माने मैं बेटा हूं, मेरे प्रति मोह है, मोह के कारण अच्छे गाय घर में रखा है और इन बूढ़ी गायों को दान करने जा रहा है, इसका फल होगा उसको नरक की प्राप्ति, और शायद मैं इनका बेटा ना हुआ होता तो मोह न होता, मोह न होती तो बढ़िया दूध वाली गाय घर में न रखते, वो भी ब्राह्मणों को देते हैं, मेरे कारण से नरक जाने वाला है, इसको मुक्ति तो करनी ही पड़ेगी, बचाना तो पड़ेगा ही। पकड़ लिया हाथ नचिकेता ने अपने बाप के, पिताजी बोलिए गाय तो ब्राह्मणों को दोगे, ये गाय तुम लेके जा रहे हो ये गाय तो जरूर तुम ब्राह्मणों को दोगे, लेकिन ये बताइए कि मुझे किसे दोगे, किसको दोगे मुझे? बोलता नहीं है। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीसरी बात हाथ पकड़ के हिलाया अपने बाप को, बोलो किसको दोगे? बाप को गुस्सा आया और कह दिया कि मृत्यवे त्वा ददामि, जा मर जा बाहर जाके खेल। हम भी कहते कभी कभी गुस्से में आते हैं तो मरता क्यों नहीं, उधर जाकर खेलता क्यों नहीं, कमरे में जाकर गुस्से में तो कह देते मरता क्यों नहीं है, क्योंकि आपका बेटा नचिकेता नहीं है इसलिए मरता नहीं है, इसलिए जिंदा ही रहता है, इसलिए कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन वो तो नचिकेता था, बाप ने कह दिया मरता क्यों नहीं, तो इसलिए अच्छा मृतवे त्वा ददामि, प्रतिज्ञा हो गई तुम्हारी, संकल्प हो गया? बोले हो गया, चलते हैं अपने राम, तो मृत्यु क्या चले गए यमराज के यहां देख लो। लेकिन नचिकेता ने बचाया, बाप को नरक जाने से बचाया, गुस्से से ही सही नरक जाने से बचा दिया नचिकेता ने। क्यों? संस्कारी था वो। हमारे सनातन धर्म में दूसरा उदाहरण है प्रहलाद का। इंद्र राक्षस कुल का वंशनाश करने के लिए कयाधु को, गर्भवती कयाधु को, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को स्वर्ग लेके जा रहा था इस उद्देश्य से कि मैं उसको स्वर्ग में रखूंगा तो वहीं उसका बच्चा पैदा होगा, और जिस समय बच्चा पैदा होगा उसी समय उसको पकड़ूंगा और मार डालूंगा, तो राक्षस कुल का वहीं वंश नाश हो जाएगा, बीज नाश हो जाएगा, फिर उसके बाद कयाधु को वापस कर दूंगा। लेके जा रहा था, नारद जी बीच में टपक गए, इंद्र ये कहां ले जा रहे हो, ये तो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। बोले हां, कहां ले जा रहे हो तुम? मैं इसको स्वर्ग लेके जा रहा हूं। क्यों? इसके पेट में जो बच्चा है ना वो हिरण्यकश्यप का वंशज है, उसको मारूंगा स्वर्ग में ले जाऊंगा, वहां जन्म होगा तब उसको पैदा होते ही मार डालूंगा, राक्षस कुल का संहार हो जाएगा। नारद जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र इस तरह निर्दोष बच्चे को मारना नहीं है, मारना नहीं है सुधारना है, मारना तो सभी जानते हैं सुधारना कोई नहीं जानता है, संत ही सुधारना जानते हो, महात्मा लोग मारना नहीं जानते। महात्मा क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? मारते नहीं, संत सुधारते हैं। इंद्र मारने के लिए तैयार था, नारद सुधारने के लिए तैयार हो गए। बेटा छोड़ दे, दे दे मुझे, दे दे, मैं राक्षस के पुत्रों को, राक्षस के वंशज को ऐसा सुधारूंगा कि ये परम भगवान का भक्त हो जाएगा, छोड़ के जा। इंद्र मान गया और छोड़ दिया, और नारद जी ने अपने आश्रम में ले गए, कयाधु को वहीं रखा। प्रतिदिन प्रहलाद को लक्ष्य करके कयाधु को भगवत चरित्र सुनाया। आप लोगों ने सारे प्रसंग सुन चुके हो। नारद जी भगवान का दिव्य अति दिव्य चरित्र सुनाते हैं कयाधु को, ताकि उसका पेट में जो बच्चा है वो सुधर जाए। ये आज वो संस्कृति खत्म हो चुकी है। हमारी संस्कृति तो यह है कि गर्भ से ही बच्चों को संस्कार देने की संस्कृति थी, पूर्वीय संस्कृति। आज हम सुनते हैं मां गर्भवती होती है, हमारी बहू हमारी बेटियां, डॉक्टर लोग उनको सजेशन देते हैं कि अब रेस्ट करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, अब आराम करना चाहिए। अब आराम करेंगे तो घर में बैठे रहेंगे, तो करेंगे क्या? तो आजकल ऐसे ऐसे चैनल और मूवी, हाथ में रिमोट लेंगे, खाट में सोएंगे और दुनिया भर के टीवी देखते रहेंगे, और उस टीवी में सब मार काट लूट खसोट बलात्कार दुराचार व्यभिचार, नायक और खलनायकों की भूमिका के अलावा टीवी में आता क्या है? और आता भी है, धार्मिक चैनल तो है, आस्था है, संस्कार है, बहुत से है, लेकिन देखता कौन है उसको? टाइम पास, आराम करना है ना। हमारी बहू और बेटियों को वो जरा भी ख्याल नहीं है कि वो स्क्रीन में जो दृश्य आ रहा है और उन शब्द में सुन रही हूं और मेरे आंख से देख रही हूं, वो सारा का सारा संस्कार मेरे पेट के बच्चे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसको जरा भी ख्याल नहीं। कौन शिक्षा देगा ये बात? कौन कहेगा? वो डॉक्टर कहता है कि तुम धार्मिक सीरियल देखो, तुम शिवपुराण पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। कहता कोई डॉक्टर? आराम करो, घर में बैठो, काम नहीं करना। लेव जी मंदिर न जाना, यहां तक कह देते मंदिर नहीं जाना। क्यों बेटा? मंदिर में भीड़ भड़ाक्का होता है, कोई तुमको धक्का मार देगा। लेव जी सुरक्षा के दृष्टि से मंदिर नहीं जाना, भीड़ भड़ाक्का में किसी ने धक्का दे दिया, तुम गिर गए। क्या बात करते हो, समझ में नहीं आ रहा है। गुरु समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि ये शरीर जब पैदा हुआ मां के गर्भ से, 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था मां को, और पेट में पानी का घड़ा है और पेट में बच्चा है, और पानी लेकर आई, जैसे घड़ा रखा बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे का नाम आत्मानंद गिरी हो गया। कौन कहेगा उसको आराम करो करके, बिचारी को है? कौन कहेगा आराम करो करके? आराम कर पाएगी वो है बेचारा? संस्कार नहीं है, शिक्षा है, संस्कार नहीं है। बाबा भक्ति जननी क्या करती है? भक्ति जननी को शिक्षा की चिंता नहीं है, भक्ति जननी संस्कार की चिंता करती है कि उसको संस्कार देना है। अभी से पालने में सुलाते हुए ही वह संस्कार देने लगती है। कौन सा संस्कार देती है? दूध क्या है उसको पिलाने का? वाचा शंख मुखे स्थिते जठरापूर्तिम चरित्रामृते। दिव्य भगवान शिव के दिव्य अति दिव्य चरित्रों रूपी अमृत का, भगवत चरित्र रूपी अमृत का वह पान कराती है, वही दूध है। हाँ, कौन पिलाती है ये? भक्ति जननी, किसको? भक्तार भक्त को, भक्त रूपी बच्चे को। किससे पिलाती है वह दूध? बोतल से नहीं, वाचा शंख मुखे। पहले के जमाने में यही तो था बच्चों को दूध पिलाने के लिए, हर घर में शंख होता था। और जब मां के दूध से बच्चे के तृप्ति नहीं होती थी तो गाय का दूध गर्म करके शंख में डाला जाता था, और शंख का जो अग्र भाग है, नुकीला भाग, उस नुकीले भाग से बच्चे के मुख में गाय का दूध पिलाया जाता था। पहले के जमाने में शुद्ध गाय का दूध पिलाया जाता था। अब आजकल तो मां अपने दूध तो वो छूने भी नहीं देगी, पता नहीं हमको सुना देते हैं संसारी लोग, आज की युवतियां क्यों नहीं दूध पिलाती है? बोले नहीं, अपना सुंदरता बिगड़ जाता है, शरीर की सुंदरता बिगड़ जाती है। क्या बदमाशी शुरू हो गई है, बोतल पिला दिया। गाय का दूध नहीं मिलता है, क्या करोगे? पाउडर घोल के पिला दिया। और क्या संस्कार होगा उनको और किससे पिला रहे? देखो बोतल, कांच का बोतल, यहां शंख के मुख से पिलाना था। शंख हमारे वैदिक सनातन धर्म में वह ज्ञान का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक है। वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिम चरित्रामृतै। उस भक्त रूपी अर्भ को, भगवत परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी अमृत को शंख रूपी माध्यम से वो भक्त रूपी अर्भ को कान से पिलाती है। लोहरी वही तो गाती है, वो उसी से वह बच्चा तृप्त होता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितो से संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम मदालसा वाक्यम अवाच्य पुत्रम। हम क्या सुनाते हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए? यही सुनाते सुनाते हैं ये है? अरे कुछ नहीं, चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाई माम, यही गा दो ना सो जाएगा वो। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष माम, यही गा दो ना भाई। कुछ नहीं, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृणाय नमः, यही तो दिव्य अमृत है, इससे वह तृप्त होता है। वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिम, जठरा आपूर्तिम, बच्चे को जो भूख लगेगा तो क्या पिलाएगी मां? दिव्य अमृत ही, परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी अमृत का शंख के माध्यम से पिलाती है मां। और उसके बाद जब बच्चा दूध पीकर जब तृप्त होता है,
3: रावण ने भगवान से शिव को प्रसन्न करके, शिव भगवान की कृपा से रावण ने तीन लोग समस्त देवताओं में विजय प्राप्त की और लंका प्राप्त की, भगवान शिव के प्रसाद से, भगवान शिव की कृपा से। इतना परम शिव भक्त है कि नित्य प्रति वो भगवान शिव का अभिषेक करता है, पूजन करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुंदर एक स्तोत्र की रचना की जिसे शिव तांडव कहते हैं, रावण कृत शिव तांडव। सुंदर स्तुति से भगवान शंकर को रावण ने प्रसन्न किया। तब रावण के भगवान की महिमा, भगवान शिव के प्रसाद से कुबेर धनपति बने, रावण को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। जिस ऐश्वर्य के साथ उसने समस्त नवग्रहों को अपने यहां अधीनस्थ कर लिया था, शनि महाराज को भी जिसने अपने राज्य में बंद करके रख लिया हो, इतना बला बल रावण को प्राप्त हुआ कि वो कैलाश पर्वत को ही भगवान शिव सहित उठाकर अपने हाथ में लेकर लंका की ओर प्रस्थल पड़ा। इतना पराक्रम ये रावण को प्राप्त हुआ तो बोले भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। कहा कि शिव महिमा, भगवान शिव का जो ऐश्वर्य तवाश्वर्यम, उनका ऐश्वर्य अद्भुत है। ऐसे भगवान शिव जो नागों का हार धारण किए हुए हैं, तीन नेत्र हैं, नित्य हैं, भस्म अंग में लगाए हुए हैं, ऐसे भगवान महेश्वर, महेश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव जो अत्यंत तृप्त हैं, अनादि हैं, ऐसे भगवान महेश्वर नित्य हैं, शुद्ध हैं, दिगंबर हैं, और उनको नौ नौ नौ नौ पांच बार केवल नकार से भी भगवान शिव, केवल एक अक्षर नौ इसको भी आप जप कर लें, क्योंकि शिव पुराण में कथा आती है नौ नौ नौ नौ नौ नौ नौ से अभिप्राय क्या है, ये नयति नौ, नेति नेति नेति नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं, जल भी नहीं पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं आकाश भी नहीं, अर्थात ये पंचभूत नहीं, नहीं के बाद जो रहा, नहीं नहीं कहने वाला जो रहा वो कौन, बोले वही तो शिव है। मैं कोई ये कहे कि मैं पंच तत्व नहीं, पंच तन्मात्रा नहीं, पंच प्राण नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं, पंच कर्मेन्द्रिय नहीं, पंच कोश नहीं, जब ये नहीं है तो आखिर नहीं है ऐसा कहने वाला तो है ना, जो इनको नकार रहा है नेति नेति के वचनों के द्वारा, नेति नेति शब्दों से जो नौ नौ नौ नौ कहकर, जो इसको नेति नेति के वचनों के द्वारा जो प्रकट कर रहा है, आखिर वो कौन, बोले वही तो शिव है, वही शिव विशुद्ध शिव है। और वो भगवान शिव कैसे,

ये भगवान मंदाकिनी, मंदाकिनी कहते हैं गंगा को, गंगा त्रपद गामिनी, गंगा का एक नाम है त्रपद गामिनी, ये तीनों लोकों में, स्वर्ग में रहने वाली स्वर्ग गंगा, जिसे स्वर्ग गंगा का नाम क्या जानते हैं, ब्रह्म द्रव जिसे कहते हैं, और दूसरी भू गंगा जो इस पृथ्वी में भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है, ये भू गंगा है, और तीसरी गंगा पाताल में रहती है जिसे पाताल गंगा कहते हैं। गंगा को इसीलिए कहा त्रपद गामिनी, ये तीनों लोक में है, ब्रह्म लोक में जो गंगा है उस गंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसे स्वर्ग गंगा कहते हैं, और दूसरी जो भूलोक में रहने वाली गंगा है इनका नाम है भागीरथी गंगा, और तीसरी जो पाताल में रहने वाली गंगा है वो पाताल गंगा है। इस प्रकार गंगा के तीन नाम है, गंगा जी का ही नाम मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी नाम रूपी गंगा कहाँ रहती है, बोले भगवान शिव के मस्तक में, जटाओं में रहती है, भगवान शिव के मस्तक में गंगा निवास करती है। बोले क्यों, भगवान शिव की इसके साथ एक बड़ी सुंदर कथा जुड़ी हुई है, जो समुद्र मंथन से के साथ में है। भगवान शिव ने विष पिया, विष आया कहाँ से, बोले समुद्र मंथन से। यदि ये मंथन की बात थोड़ा सा विचार करो तो मुझे ऐसा लगता है कि मन का अवरोधन करना, मन का अवरोधन कर, मन को रोकना समुद्र को बांधने से बढ़कर के और कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे कोई समुद्र को बांध ले वैसे ही इस मन को का अवरोधन कर लेना है, मन को रोकना है। और समुद्र मंथन क्या है, बोले ध्यान में समाधिस्थ स्थिति को प्राप्त कर लेना, ये सागर मंथन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात ध्यानस्थ समाधिस्थ स्थिति को ही मंथन की स्थिति कहा गया है। जब तक वो स्थिति, यूं तो ध्यान और मनोनिरोध, मन का निरोध करना, क्योंकि एक जन्म से नहीं कई जन्मों से हमारा मन निरंतर संसार के साथ दौड़ रहा है। जगत प्रपंच में ये मन ऐसा लगा हुआ है, और प्रपंच है भी क्या, यत्र यत्र मना तत्र तत्र प्रपंच, जहां जहां आपको मन दिखाई पड़ता है उसी का नाम प्रपंच है, अर्थात संसार है। मन, ऐसे मन को रोक लेना समुद्र बांध लेना है, समुद्र पर बांध बांध लेना जैसे ही है। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के सागर मंथन किया, और ये मंथन करने से भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए, जो सागर मंथन किया, और सागर मंथन करते हुए समुद्र में से हलाहल नामक विष निकला। जब भगवान शिव अंजलि में उस विष का पान करने लगे, अर्थात उस विष को कंठ में उतारा, उदर में जाने से माँ पार्वती ने रोक लिया, उमा ने रोक लिया, उदर में नहीं जाने दिया, और वो कंठ में ही रह गया। जब भगवान ने विष पान किया, हाथ में कुछ छींटे रह गए, क्योंकि शायद हो सकता शंकर जी के पास उस समय रुमाल न हो जो हाथ पहुंच ले, भगवान ने वो छींटे मारे तो थोड़ा सांप ने ले लिया, थोड़ा बिच्छू ने ले लिया, वो छींटे उनके मुंह में चले गए तो इनमें भी ये विष आ गया, ऐसी एक कथा जुड़ी हुई है। भगवान शंकर ने जैसे उस विष को कंठ में अवरोधन किया, रोका, तो उसकी गर्मी कहाँ चली गई, बोले मस्तक में चली गई। अब गर्मी जब मस्तक, विष की दाहकता
मस्तक पर पहुंची तो भगवान शिव ने और एक तरफ आग मस्तक में प्रलयंकर अग्नि ललाट में और सिर के ऊपर विष की गर्मी, तो देखा कि भगवान शिव को बहुत कष्ट हो रहा है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म द्रव अर्थात वामन अवतार के समय भगवान के पादुका को पाद अंगुष्ठ को धोकर वो धोवन जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा था वो भगवान शिव की ओर जल जटा में डाला, जिससे कि भगवान के मस्तक पर वो विष की दाहकता समित हो शांत हो। तब से भगवान शिव को जलाभिषेक की परंपरा चल पड़ी। भगवान शिव के ऊपर जल जितना जल चढ़ाओ बोले उतना ही भगवान को वो मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, शीतलता मिलती है। तो कहा मंदाकिनी सचिल, ये जो जल है भगवान शिव की जटा में मस्तक पर है, ब्रह्म द्रव है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो कमंडल में रखा गया था वो भगवान शिव की जटा के ऊपर गंगा के समान अखंड रूप से वो जल भगवान शिव के मस्तक पर आया। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के इस विष की दाहकता को स्मित शांत करने के लिए भगवान के शरीर पर क्या लगाया गया, चंदन लगाया गया। भगवान शिव के मस्तक पर चंदन सलिल चंदन चर्चित आया, चंदन से ये श्रीखंड चंदनम पुण्यम, इसका नाम है श्रीखंड माने श्री शोभा, श्री सुंदरता, श्री शीतलता, सुशांतता। अर्थात चंदन को लगाने से क्या मिलती है, शोभा मिलती है। भगवान शिव के शरीर पर मस्तक पर चंदन लगाया गया और इस चंदन से भगवान की इस विष की जो दाहकता थी उस पर शीतलता मिली, ठंडक मिली, सुशांतता मिली, भगवान को शांति की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा चंदन भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं और चंदन भगवान श्री हरि भी लगाते।

कंकणम। भगवान श्री हरि अपने शरीर पर सारा चंदन लगाते हैं। जानते हैं चंदन क्यों लगाते हैं? भगवान श्री हरि नारायण जगत के कल्याण के लिए आज भी बद्रिका आश्रम में बैठे हुए तपस्या कर रहे, तप करते करते जो तप की अग्नि है अर्थात तप का तेज है उनके शरीर पर बढ़ रहा है, उससे गर्मी बढ़ रही है। निश्चित रूप से जो तपश्चर्या करते हैं और जो इष्ट की आराधना करते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर का टेम्परेचर हमेशा 105 रहता था, उनके शरीर में हमेशा, क्योंकि तप से, ब्रह्मचर्य और तप दोनों के बढ़ने से शरीर में उष्णता बढ़ती है। उस उष्णता को, उस तेज को शांत करने के लिए, शीतलता देने के लिए चंदन का आलेप लगाया जाता है। आपने कभी भगवान बद्रीनाथ का श्रृंगार दर्शन किए हो तो आपने देखा होगा कि रावल जी पहले उनके सारे शरीर में चंदन लगाते हैं, फिर भगवान को वस्त्र धारण कराते। कहा कि ये चंदन किस लिए? उनके शरीर में जो तप का तेज है, उष्णता है, वो शांत हो, शीतल हो, सुशांति का उन्हें आनंद। और ये भगवान शिव के मस्तक पर चंदन उनको शीतलता देने वाला है। भगवान शिव शांत हैं, शीतल हैं, अर्थात ये चंदन भगवान ने मस्तक पर धारण किया हुआ है। गंगा की धार सिर पर है और चंदन उनके मस्तक पर चर्चित है। नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वर, नंदीश्वर भगवान के कपर्दिनी नामक ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र थे नंदी। नंदी को ये कहा था कि 16 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी। नंदी को जब अपनी मृत्यु का पता लगा तो ये तप करने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के इन्होंने तप किया, तपस्या करने के लिए। भगवान शिव की तपस्या करते हुए भगवान से वरदान प्राप्त करके नंदीश्वर भगवान शिव की तपस्या करते हुए इसी मंत्र का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय। यही मंत्र पूर्व में देवर्षि नारद ने पार्वती को दिया था, यही मंत्र नंदीश्वर ने जप किया था, यही मंत्र रावण ने जप किया था, यही मंत्र कुबेर ने जप किया था, यही मंत्र बलिपुत्र बाण ने जप किया था। इस प्रकार भगवान शिव इस मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का जप करते हुए नंदीश्वर ने बहुत समय तक तप किया, जप किया और भगवान शिव के प्रथम गण के रूप में उन्होंने स्थान प्राप्त किया तपश्चर्या से, तप करके ये दिव्य स्थान नंदीश्वर को प्राप्त हुआ। जब इनकी मृत्यु निकट आई, जैसे मार्कंडे ऋषि ने, भगवान मृकंड पुत्र मार्कंडे ने अपनी मृत्यु को नजदीक देखकर, यमदूतों को पास आते देखकर भय से शिवलिंग का आलिंगन कर दिया था और जब शिवलिंग पर मस्तक रखकर शिवलिंग को दोनों हाथों से बांधे हुए भय से शिव का आश्रय लिया, भगवान शिव कपर्दिनी के रूप में प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल लेकर यम दूतों को भगवान शिव ने दूर किया था। मार्कंडे की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। मृकंड ऋषि के पुत्र हुए हैं, इनकी आयु केवल बहुत छोटी है। पिता ने बाल्यकाल से ही इन्हें ये समाचार ये बताया है कि बेटा अपने से बड़े गुरुजन कोई मिले तो उनके चरणों में प्रणाम कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना। एक बार सप्त ऋषियों को इन्होंने
प्रणाम कर लिया। ऋषियों के मुंह से अनायास शब्द निकल आए, जब कोई चरणों में दंडवत झुक जाता है तो वाणी उसे आशीष देने के लिए किसी की आज्ञा नहीं मांगती है। आशीष हृदय से निकलता है, उसके लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। किसी को आशीर्वाद देने के लिए किसी से आज्ञा मांगनी नहीं पड़ती, इसे आशीर्वाद दें कि नहीं दें, वो तो स्वतः हृदय से निकलकर बाहर आता है। परंतु आशीर्वाद लेने के लिए वो पात्रता तो हो। बोले आशीर्वाद किसको प्राप्त होता है, जो अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है, जो चरणों तक झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, वृद्ध जनों के चरणों में, पूज्य जनों के चरणों में झुकना चाहिए, उनके चरणों को छूना चाहिए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है वो अंगुलियों से प्रवेश, प्राण शक्ति का संचारण इन अंगुलियों से होता है, और हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो जाकर पृथ्वी में अर्थ होती है। किससे? पांव की अंगुलियों से, पांव से। इसीलिए कहा प्रपद्धे चरणों को पंजे को पकड़ना चाहिए, पांव के पंजे को पकड़ लो। इसीलिए कहा कि जब भगवान के गुरुजनों के चरणों के पंजे को आप पकड़ लेंगे तो आपके शरीर में उनकी ऊर्जा अर्थात उनका तप, उनका आशीर्वचन, उनका ज्ञान आपके अंदर स्वतः अर्थ हो जाएगा, तब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहा कि ये चार चीज, वृद्धो सेवति नित्यता, नित्यता जो वृद्ध जनों की सेवा करता है उसे चार चीज बिना मांगे मिल जाती है। बोले क्या? आयु, बल, यश और विद्या उसे मिल जाती है। मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम कर लिया, उनके मुंह से अनायास शब्द निकल आया चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव आशीर्वाद जब मिला बालक ने की ओर देखा तो उसके मस्तक पर तो ये सब कुछ भी नहीं। तब वो ब्रह्मा जी के पास लेकर गए, ब्रह्मा जी से के मुंह से भी यही शब्द निकला, तब उन्होंने भी आशीर्वाद चिरंजीवी होने का दिया। कहा महाराज इसकी तो आयु ही बहुत थोड़ी है, 7 वर्ष की है। तब ब्रह्मा आदि देव ने उन्हें कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की कृपा से तुम्हें दीर्घ

भगवान शिव के प्रथम बने। आयु बहुत लंबी हो या बहुत छोटी हो, बहुत चिंता का विषय नहीं है नारा, मेरा अपना मत है। इसके लिए बहुत पर जितना हमारे पास समय है उसका सही उपयोग। आयु की बात तो ये है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों में युद्ध हुआ, असुरों ने देवलोक छीन लिया, इंद्र भाग रहे हैं, हिमालय देवता आदि सब हिमालय की ओर मुंह किए हुए, हिमालय की ओर जा रहे हैं। जब हिमालय की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक महात्मा मिले। महात्मा कैसे मिले? जिन्होंने अपने सिर के ऊपर खाट रखा हुआ था, अपने खाट को सिर पर रखे हुए एक महात्मा मिले। तो जैसे उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया, इंद्रादि देवताओं ने, उन्होंने तुरंत अपने सिर से खाट उतारी, उसे बिछाई और उसमें बैठ गए। उनके छाती के आधे बाल गिरे हुए थे। इंद्रादि देवताओं ने उनसे पूछा, महाराज आपके ये छाती के आधे बाल कैसे गिरे हुए? कहा कि हाँ, जब एक कल्प बीतता है तो तब मेरी छाती का एक बाल गिरता है। जानते हैं इस ऋषि महात्मा का नाम क्या है? लोमस ऋषि। इनका नाम है लोमस ऋषि। एक कल्प बीतने पर एक छाती का बाल गिरता है, आधे बाल गिर गए हैं। लोमस ऋषि कहते हैं, एक कल्प बीतने पर मेरे छाती का एक बाल गिरता है। और एक कल्प कितना बड़ा? 4,32,000 वर्ष का हमारा कलयुग है, और उसका दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग, 71 बार चतुर्युगी बदलती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा का एक वर्ष होता है तब एक कल्प होता है, और उस कल्प में, एक कल्प में 14 मनु का राज्य चलता है। तो एक कल्प में एक बाल गिरता है लोमस ऋषि का, और वो कहते हैं देखो आधे बाल तो मेरे गिर गए हैं, आधे रह गए हैं, मैंने सोचा घर बना करके क्या करूंगा, इसलिए मैंने अपने पास खाट रखी हुई है, रात को इसमें सो जाता हूँ, सुबह इसमें, रात को इस खाट में सो जाता हूँ, जब जाता हूँ तो सिर में रख कर ले जाता हूँ, दिन में बैठने का काम देता है, रात को सोने का काम देता है, इसलिए मैं अपने पास खाट रखता हूँ। तो लोमस ऋषि जिनकी इतनी बड़ी आयु है, उनको वो कहते हैं कि आधी तो निकल गई, आधी अब रह गई, इसके लिए कहाँ घर बनाऊं कि झंझट में पड़ूं, इसलिए मैंने घर वर नहीं बनाया। जिनकी इतनी बड़ी आयु है उन्हें घर की चिंता नहीं है। और हमसे कोई पूछे, पल की खबर नहीं सामान 100 वर्ष का। इतना अनित्य, इतना क्षणभंगुर और इतना छोटा हमारा जीवन, और उसमें हमें चिंताएं कितनी बड़ी बड़ी है। कभी घर की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी कारोबार की चिंता, कभी किसी चीज की चिंता, चिंता चिंता चिंता इतनी हमने बना ली है कि चिंता चिता समान, जिनमें हम चिंतित होते जा रहे हैं। पर याद रखना नारायण, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके पास चिंता नहीं होती है, चिंतन होता है। वो तो चिंतन को अपनाते हैं, चिंता को नहीं। उनके भीतर निरंतर प्रभु चिंतन बना रहे। चिंतन माने उनका याद बनी रहे किसी न किसी रूप से, उनका हृदय भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वो कभी अपने आप को भगवान से अलग नहीं करते। इस प्रकार नंदीश्वर भगवान के प्रथम गण हुए हैं। भगवान शिव की पूजा
जब तक नंदीश्वर के साथ नहीं।

भगवान शिव अनुग्रह करने में मैंने कल आपको कहा था कि भगवान शिव अनुग्रह करते हैं, अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। दया करना, अनुग्रह करना, कृपा करना, ये भगवान शिव का स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कौन भक्त जो उनकी शरण में आ जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं, ये असुर है, देव है, मानव है, पशु है, कौन है, भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका हृदय कैसा है, ये मेरी कैसी, मुझसे कितना स्नेह करता है, भगवान उसी पर कृपा कर देते हैं। भगवान शिव की अष्ट मूर्तियां हैं, आठ मूर्तियां हैं भगवान की, जल मूर्ति, मृणमय मूर्ति, वायुमय मूर्ति, वायुलिंग है, अग्निलिंग भी है, आकाश लिंग भी है, सूर्य लिंग भी है, चंद्र लिंग भी है, और यजमान मूर्ति, यजमान के रूप में भी भगवान शिव ही है। ये समस्त अष्ट मूर्ति भगवान शिव की हैं, पांच भगवान शिव के मुख हैं, अष्ट मूर्ति हैं, और इन रूपों में भगवान शिव हैं। कहा कि हे नाथ, मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय, भगवान शिव मंदार आदि पुष्प, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र, इन पुष्पों को बड़े संभाल करके, अपने मस्तक से लगाकर, आंखों से लगा करके, आदर के साथ इनको ग्रहण करना चाहिए। नारायण, ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव में चढ़ा हुआ शिव निर्माल्य कहीं हमारे पांव में न लग जाए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुष्प दंत की, महिमन स्तोत्र की रचना जिन्होंने की है, उनका नाम है दसन, दसन नामक, जिनका नाम है पुष्प दंत नामक गंधर्व, एक गंधर्व हुए हैं जिनका नाम था दसन पुष्प दंत। वो क्या करते थे, प्रतिदिन राजा के बगीचे में जाकर जो सुंदर सुंदर फूल होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के वो फूल बिना बताए सूक्ष्म रूप से जाकर वो फूलों को तोड़ लेते, तोड़कर अंतर ध्यान हो जाते, रोज फूल चोरी करते थे। राजा ने सोचा कि राजा के सिपाहियों ने आकर राजा से कहा, महाराज बगीचे में फूल तो खिलते हैं, राजा के पास फूल नहीं पहुंचते हैं, तो फूल तो खिलते हैं पर ब्रह्म मुहूर्त में आकर कोई चोरी कर ले जाता है, और वो चोर पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें अंतर ध्यान होने की विद्या आती थी, पकड़ में नहीं आता, राजा को फूल नहीं मिलते श्रृंगार के लिए। एक दिन राजा ने युक्ति की, कहा कि देखो जिस रास्ते से वो बगीचे में जाएं, उस मार्ग में शिव निर्माल्य माने शंकर जी में चढ़े हुए फूल, पत्तियां, चावल, जो कुछ भी है शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे रास्ते में बिखेर दो, जब उसे वो उलांग लेंगे, उसे नांग करके चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा शंकर जी की पूजा करने के लिए राजा को फूल नहीं मिलते थे, तो उन्होंने वो शिव निर्माल्य बिखेर दिया। जैसे ही पुष्पदंत ब्रह्म मुहूर्त में गए, वापस फूल लेकर जब अंतर ध्यान होने लगे, तो शिव निर्माल्य उनसे लांघा गया, और ये दोष हो जाने के कारण उनके अंतर ध्यान होने की विद्या समाप्त हो गई। समाप्त हो जाने पर अब तो पुष्पदंत सोचने लगा, मन में विचार करने लगा कि राजा के पास जाऊंगा वो मुझे दंड देंगे, और भगवान शिव के पास जाऊंगा क्योंकि अपराध मैंने जिस पर जिसका किया है, यदि मैं उसी की शरण में जाऊंगा तो वो मेरे पर कृपा करेंगे। राजा के पास जाने पर दंड मिलेगा, भगवान शिव के पास जाने पर उनकी कृपा मिलेगी,
पुष्प दंत ने भगवान के लिए स्तुति करना आरंभ किया वही महिमन स्तोत्र है, महिमन स्तुति है। पुष्पदंत ने स्वयं अपने आप से सुंदर श्लोकों की रचना करके भगवान शिव को प्रसन्न करना आरंभ कर दिया और वो भगवान शिव उन पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। जिसका अपराध हो जाने पर भी शिवा अपराध हो गया, उनकी शरण चले गए, भगवान ने उन पर कृपा कर दी। इसलिए कितना बड़ा है अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते, हजारों हजारों अपराध होने के उपरांत भी यदि उन अपराधों को छोड़कर भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं तो भगवान शिव उन पर कृपा कर देते हैं। ऐसे कृपालु देव और कोई नहीं है, शंकर बड़े कृपालु हैं, शंकर बड़े दयालु हैं। ऐसे दयालु शिव की हम सब शरण लें, वो हम सबों का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान।

0: listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Surya mein jaise amrit hai, Surya amrit hai, waise main bhi amrit ho jau Surya ke samaan. और सूर्य के अंदर अमृत है ये बताया. यश्च अयम् पुरुषः यश्च असौ आदित्ये इत्यादि श्रुतियों से ये प्रसिद्ध है कि सूर्य के अंदर पर भी अमृतत्व विद्यमान है. तो सूर्य के अंदर जो ब्रह्म आत्म तत्व जो विशुद्ध रूप से विद्यमान है, तद्वत, इव का अर्थ है तद्वत, ठीक वैसे ही मैं भी ऐसा ही हो जाऊं. देखिए उपनिषदों में यह भी कहा है, जो हमारी आंख में जो पुरुष है वही सूर्य में, सूर्यमंडल वर्ती जो पुरुष है. इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश इत्यादि से. आ प्रणखात सर्व सुवर्ण एवा, सूर्य के अंदर जो है हिरण्य सदृश पुरुष की कल्पना हमारे श्रुतियों में है. और जो सूर्यमंडल में है वो हमारी चक्षु में है, वो अमृत. उपनिषदों में ऐसा कहा. तो आंख में होने का अभिप्राय ये नहीं कि आंख से जैसे हम देख सकते हैं, तो ये जो दर्शन जिससे हो रहा है वो दर्शन से जो उपलक्षित वो आत्मा वही है जो सूर्य में है. इसलिए अधिदेव और अध्यात्म की एकता है. देखिए ये सारा संसार है अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये त्रिपुटी मूलक ही है. देखिए तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. देखिए अध्यात्म ये जो हमारी इंद्रिया है वो अधिभूत पदार्थों का साक्षात्कार तभी कर सकती है जब अधिदेव की कृपा हो, तभी संभव है. केवल चक्षु के लिए ले लीजिए दृष्टांत के रूप में, वैसे तो सभी इंद्रियों में ये है सब, किंतु आंख को लीजिए. हमारी आंख जो है बिल्कुल स्वस्थ है, देखने में समर्थ है, निर्दोष है, फिर भी यदि घनघोर अंधेरा है तो अंधेरे में जो पड़ा पदार्थ है क्या उनको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. किंतु प्रकाश हो तो तुरंत देख सकते हैं. आंख को देखने के लिए किसकी कृपा चाहिए? प्रकाश चाहिए. प्रकाश की कृपा नहीं होगी तो आंख स्वस्थ होते हुए भी वो पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकती है, देख नहीं सकती है. तो वो जो प्रकाश है वो हमारी आंख के अंदर विद्यमान होते हुए जो पदार्थ को वो दिखा देते हैं. इसलिए सूर्यमंडल वर्ती जो पुरुष है वो हमारी आंख के अंदर विद्यमान है. वो समष्टि देवता है और हमारे चक्षु के अंदर वो व्यष्टि रूप से विद्यमान है. इसलिए दृष्टांत बताया वाजिनी इव, जैसे सूर्य के अंदर अमृत है श्रुति प्रसिद्ध, वो ब्रह्म आत्म तत्व विशुद्ध जो है वो ही मैं भी हूं, अथवा मैं ऐसा हो जाऊं, सिद्ध रूप में कहेंगे तो हूं, या साधक रूप में कहेंगे तो मैं इस तरह हो जाऊं, ऐसा अन्वय करना। अब देखिए दूसरी बात, यहां पर एक और आगे भावना की जा रही है, जैसे समझते हैं कि हम लोग धनवान है तो हमारे पास कौन सा धन है जिससे हम अपने को धनवान कहते हैं, रत्नादि। यदि हमारे पास सुवर्ण है, रजत है, रत्न है, जो भी जिसको धन कहते हैं यदि वो है हमारे पास तो हम अपने को धनवान कहते हैं। तो धनिक जो व्यक्ति है उनके लिए ये रत्नादि धन है, वैसे ब्रह्मविद के लिए ये आत्म तत्व ही क्या है, धन है। ये बात अगली पंक्ति में बता रहे, देखो, द्रविणम सवर्चसम। कहते हैं जो सवर्चसम द्रविणम वो मैं हूं। आत्मतत्व क्या है, सवर्चसम द्रविणम है। सवर्चसम द्रविणम वो आत्मतत्व इसलिए है कि वो मोक्ष सुख का हेतु है। देखिए व्यवहार में हम लोग धन क्यों इकट्ठा करते हैं, कि ये सुख का हेतु है। तो जैसे बाह्य धन है वो सुख का हेतु है, इसलिए हम उसको इकट्ठा करते किंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये सुख का हेतु होते हुए भी दुख का हेतु वो ज्यादा है। यदि देखिए वो केवल मात्र सुख का ही हेतु होता तो जिसके पास धन है वो पूर्ण सुखी होना चाहिए था, वो मात्र सुखी ही होना चाहिए था, दुखी नहीं होना चाहिए था। किंतु संसार में ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं मिलेगा कि जिसके पास धन है वो सुखी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो सांसारिक धन है वो जितना बढ़े इतना सुख के साथ वो दुख को भी बढ़ाने वाला हो जाता है। जितना बढ़ जाए तो भोगने की तो बात दूर, उनका रक्षण करने की चिंता सबसे बड़ी वो उपस्थित हो जाती है। और जो आत्मतत्व निष्ठ है उनको ये चिंता नहीं है। अच्छा ये धनादि है वो हम इकट्ठा करते हैं, बाह्य धन है, तो इससे होता क्या है, हमारा ये योग क्षेम चलता है। क्या चलता है, योग क्षेम। योग क्षेम की चिंता हम सबको रहती है, इसलिए इसको इकट्ठा करते हैं। अब जो इस और जो चला जाता है, ये यहां पर जो जैसे बताए जा रहे आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिसके मन में इच्छा है, ऐसा जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु कोटि में इस कोटि तक पहुंच जाता है, तो उनको ये बाह्य योग और क्षेम की चिंता नहीं रहती है। भगवान ने कहा कि योग और क्षेम को मैं वहाता हूं, योग क्षेमम वहाम्यहम, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है वो तो क्या हो जाता है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। या अभी होने के लिए जो साधन निष्ठ है उनको भी इस बात की चिंता नहीं रहती है। योग का अर्थ आप फिर आसन न ले लीजिए भी। योग का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग है। जो प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है उनको कहते हैं योग। हम लोगों की यही कमी है, जो हमारे पास है ना उनका हम आनंद नहीं लेते। जो नहीं है उनकी चिंता करते हुए दुखी होते रहते हैं। बस आज इतना प्राप्त हो गया, अब आगे मैं इतना प्राप्त कर लूं, ये चिंता बनी रहती है। इसलिए जो अप्राप्त है उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं और सारा संसार स्वाधीन हो जाए तब भी वो अपर्याप्त ही है। फिर व्यक्ति कहेंगे कि अब जो है मंगल के ऊपर जाना है या चंद्र के ऊपर जाना है। कुछ दिन पहले आया था कि मंगल के ऊपर अब कॉलोनी बन रही है, बनने वाली है, और प्लाट भी बिक रहे हैं। बताओ प्लाट बिक रहे और लेने वाले भी है। बताओ, संसार अनंत है इसलिए कामना भी अनंत है। संसार की समाप्ति नहीं है, हद नहीं है, तो कामना की भी हद नहीं है। इसलिए अप्राप्त की प्राप्ति योग है, उसमें ही व्यक्ति लगा रहता है। और जो प्राप्त है उनके रक्षण की चिंता बनी रहती है उसको कहते हैं क्षेम। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। जो प्राप्त है उनको रक्षण करना है। तो ये जो बाह्य धनादि है उसकी ये हालत है। इसलिए यहां कहा गया कि द्रविणम सवर्चसम। देखो धन की आवश्यकता तो रहती ही है, किंतु यहां पर भावना ये कही गई कि ये सवर्चसम ही द्रविण है, वही पारमार्थिक धन है। इसलिए इस और जो चलते हैं इसकी कामना से जो साधना करते हैं, मोक्ष की कामना से, मोक्ष प्राप्ति की मुमुक्ष होकर के जो साधना करते हैं, तो वो जो है उसको इस बात की चिंता नहीं रहती है। इसलिए तो देखिए हमारे यहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिसके पास यदि धन के लिए यदि कहे तो जो है कि फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर भी जो बड़े बड़े महाराज है, राजा महाराजा उनके शरण में जाकर के लंबी दंडवत करते हैं। क्यों ऐसा? उनके पास क्या है? अब राजा के पास क्या कमी है? जो अकिंचन महात्मा के पास जाकर के लंबी दंडवत करते हैं और सेवक की तरह खड़े रहते हैं, तो उनके पास ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। राजा के पास जो धन है वो समाप्त होने वाला है। हमारे यहां ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे कई एक महापुरुष है। वैशेषिक दर्शन के आचार्य है महर्षि कणाद, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जहां पर रहते थे तो वो बिल्कुल अकिंचन और अपरिग्रह अवस्था में वो रहते थे। एक सामान्य घास फूस की झोपड़ी और जो है पानी पीने के लिए एक घट आसन और जो है लिखने के लिए पत्र है, बस वो लिखा करते थे। वैशेषिक सूत्र की रचना उन्होंने की है, वैशेषिक दर्शन के आचार्य है काणाद, और उसके लिए ये भी कहा जाता है कि वो कण कण को बिन करके ला करके अपना जीवन यापन करते थे। जैसे गेहूं काट लिया तो किसान ने वो जो काटा हुआ जो घास है वो एक जगह इकट्ठा करके ले जाते हैं जिसे खलिहान बोलते हैं, तो खेत पूरा खाली कर देते थे। और फिर उस खेत पर किसान को जो कोई अपेक्षा नहीं रह जाती वो कहते हैं बस अब काट लिया अब यहां कुछ नहीं रहा। फिर उसको तो फिर बाद में पुनः उनको जो है खेत जोतना होता, तो ऐसी अवस्था में वो जाकर के वो खेत में जो छूटा हुआ जो है कटा अन्न उसको वो बिन करके लाते थे, उसमें से दाने निकालते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते, ऐसा उनकी कहानी में है। तो वो जिस राजा के हद में वो रहते थे उस राजा को पता चला, किसने कहा कि आपके राज्य की हद में ऐसे विद्वान और दार्शनिक रहते हैं जिसके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है और आपको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, और ये है भी यदि किसी के हद में यदि कोई विद्वान है वो इस तरह से वो रहते हैं तो उनका दोष है, वो राजा को लगता है यदि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो। इसलिए राजा ने अपने अनुचरों से कुछ धन भेजा, अनुचर वहां गए धन लेकर के, कुटिया को बाहर से खटखटाया अंदर से, बोले कौन है, तो कहते हम अनुचर है, राजा ने हमको भेजा है ये धन देने के लिए। तो उन्होंने बिना खोले कहा कि वे मेरे को नहीं चाहिए, वो गरीबों को बांट दो। तो वो तो अनुचर ठहरे, उनके अंदर जो है विवेक तो होता नहीं, वैसे ही जो है उन्होंने उद्धत वर्तन करते हुए कहा कि आपसे और ज्यादा अपने राज्य में कोई गरीब नहीं है, सबके पास जो है खाने पीने की व्यवस्था है, आपके पास केवल नहीं है, इसलिए आप ले लीजिए। लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो लोग ऐसे चले आए, राजा को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, रानी को पता चला, रानी ने कहा कि राजा जी आप खुद जाइए, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई वही महान विद्वान है। राजा ने सोचा कि ठीक है मैं ही चले चलता हूं, धन लेकर के मैं ही जाता हूं। तो राजा है वो खुद गए और खुद जाकर के वो धन वहां पर देते हैं, लेकिन पुनः वो आचार्य कणाद ने कहा कि मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, अब इसको गरीबों में बांट दो। राजा पुनः लौट आए, राजा ने यह नहीं कहा कि आप जो है सबसे गरीब तो आप ही, ऐसा उन्होंने उद्धत वर्तन नहीं किया। उनको भी मन में यह लगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो कहते हैं कि गरीबों में बांट दो, वो खुद गरीब नहीं है। लेकिन बोला नहीं, वो वापस चले आए, रानी को बताया, रानी ने फिर कहा कि अरे वो कोई बड़े रसायन विद्या के जानकार है, आप इसी समय चले जाइए और उनके पास जाकर के रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा करें और रसायन विद्या को जान ले, जिससे कि आप चाहे जितना सोना बना सकते हैं। राजा उसी समय रात में आए और दरवाजा खटखटाया, ऋषि ने दरवाजा खोला और लंबी दंडवत नमस्कार करते हुए प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे को रसायन विद्या पढ़ाइए। तो ऋषि कहने लगे कि तुमको रसायन विद्या की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास कोई कम धन है क्या? तो कहने मेरे पास है, फिर भी मेरे को अधिक चाहिए। तब जो है ऋषि ने कह दिया कि सबसे गरीब तो तुम हो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम राजा होते हुए मेरे पास आकर के ये दंडवत नमस्कार कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या कमी है? भगवान भाष्यकार प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा दरिद्र ही विशाल तृष्ण। दरिद्र कौन है संसार में? तो कहा जिसके अंतकरण में विशाल तृष्णा है वही दरिद्र है, और धनवान कौन है? तो कहा जो संतुष्ट है। इसलिए जो आत्मनिष्ठ यति है वो, जो संतुष्ट है वो सबसे धनवान है, और सबसे धन क्या है? यही आत्म तत्व। इसलिए कहा सवर्चसम द्रविणम। इसलिए आप द्रविणम या धन का आप जो है दो प्रकार कीजिए, एक सवर्चसम द्रविणम और दूसरा लीजिए अवर्चसम द्रविणम। हम लोगों के पास जो धन है वो कैसा है? अवर्चसम है। अवर्चसम उनको कहेंगे जिसका नाश हो जाता है, वो अवर्चसम द्रविणम है। और ये जो यहां पर भावना की गई कि मैं सवर्चसम द्रविणम, सवर्चसम द्रविणम उसको कहते हैं आत्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान वही सवर्चसम द्रविणम है। इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञान जो आत्म तत्व का प्रकाशक है वो मैं हो जाऊं। तो जैसे द्रविण यानी द्रव्य वो सुख का हेतु तो होता है, सांसारिक सुख का हेतु तो होता है, अथवा ये लीजिए कि अवर्चसम जो द्रविणम है वो सांसारिक सुख का हेतु तो होता है, वैसे ये सवर्चसम द्रविणम है वो मोक्ष के सुख का हेतु तो है। और मोक्ष सुख ऐसा है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे मोक्ष का सुख मेरे को मिले, इस कोटिका में हो जाऊ। और फिर कहा आगे, सुमेधा अमृतोक्षित। सुमेधा, मैं सुमेधा हो जाऊं, ऊपर से लगाए सुमेधा अस्मि, सिद्ध कोटि में मैं सुमेधा हूं और साधक कोटि में मैं सुमेधा हो जाऊं। सुमेधा किसको कहेंगे? शोभना मेधा, ऐसी बुद्धि जिसकी शोभा हो, ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक जो मेधा है, ऐसी मेधा वाला मैं हो जाऊं। ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादक जो ग्रंथ और ग्रंथार्थ धारण शक्ति वाला मैं हो जाऊं, ये भावना, मेरे ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ जाए, ये भावना की गई। तो ये सुमेधा। और फिर कहा अमृतो अक्षित। सुमेधा प्राप्त होने के बाद ही अमृत यानी कि मैं अमरण धर्मा हूं, मेरे को अब मृत्यु का डर नहीं है। अमृतोक्षित, अक्षित यानी क्षिति से रहित, यानी कि मैं अव्यय हो जाऊं, मेरा कभी क्षय न हो। तो ऐसा कौन पद? आत्मा, आत्मा ही अमृतोक्षित है, यानी स्वरूप के आनंद का अनुभव मेरे को हो। तो इस तरह की जो है ये बात है वो त्रिशंकु नाम के ऋषि का ये वचन है। त्रिशंकु नाम इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम। त्रिशंकु नाम के ये ऋषि है, उनका ये वेदानुवचनम, त्रिशंकु हो त्रिशंकु नाम के ऋषि का ये वेदानुवचनम है। वेदानुवचनम का अर्थ है वेदः वेदनम, वेदानुवचनम जो वेद शब्द है उसका अर्थ है वेदनम, वेदनम यानी कि अनुभव, आत्मज्ञान रूप अनुभव। और अनुवचनम का अर्थ है आत्मज्ञान के पश्चात जिसको ऐसा अनुभव हुआ है, तो ये त्रिशंकु ऋषि के लिए सिद्ध वचन है और मुमुक्षु के लिए ये साधक, साधक कोटि में मुमुक्षु इस तरह की भावना करे और सिद्ध कोटि में ये त्रिशंकु नाम के ऋषि ने ऐसा अनुभव किया है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्ति के अनंतरम ये वचन है, उनका कथन है। जैसे वामदेव जी का कथन उपनिषदों में प्रसिद्ध है, वामदेव जी को ऐसा अनुभव हुआ ज्ञान के बाद कि मैं ही मनु हूं, मैं ही सब हूं, अहम मनु अभवत, ऐसा अनुभव उपनिषद में वामदेव जी का प्रसिद्ध। वैसे ये त्रिशंकु नाम के ऋषि का ये अनुभव है, यानी कि आत्म तत्व से ही कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्य हो जाता है। यही जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इस तरह की कोटि हमारी आए, ग्रंथार्थ धारण शक्ति वधे और हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके, इसलिए इस तरह की प्रार्थना प्रतिदिन ये करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhanda Nandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो असौ सोऽहं यजामि ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः जाग्रतादित्रयोन्मुक्तम् जाग्रतादिमयं तथा ओंकारेक्षु संवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। मांडूक्य उपनिषद में पिछले कुछ दिनों से हम ऋषियों द्वारा अनुभूत और निर्दिष्ट जीव का सही स्वरूप क्या है, इस संबंध में थोड़ी चर्चा और चिंतन करते रहे। निष्कर्ष रूप से बात इतनी ही है कि सत चित आनंद सही स्वरूप है और दुख जितने भी हैं वो आरोपित हैं। जितने भी दुख हैं वो स्वरूप को ना जानने के कारण हैं, अथवा इस स्थूल शरीर से तादात्म्य स्थापित कर हम जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य स्थापित कर हम स्वप्न अवस्था का अनुभव करते हैं और अज्ञान से तादात्म्य कर हम सुषुप्ति का अनुभव करते हैं। इन तीनों ही अवस्थाओं में सत्य से हम दूर रहते हैं। जागते हुए हम इंद्रियों की तृप्ति के कारण सत्य की ओर नहीं जाते। स्वप्न में वासनाओं के कारण हम सत्य की ओर नहीं जाते। सुषुप्ति में अज्ञान के कारण हम सत्य की ओर नहीं जाते। तीनों ही अवस्थाओं में सत्य से वंचित रहते और एक श्रुति में ये बात कही गई कि वास्तव में जो तत्व है वो ना सोता है ना जागता है ना स्वप्न देखता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक है, आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है। स्वयं वो न सोता है न जागता है न स्वप्न देखता है और वही अपना सही स्वरूप है। अगर ये बात अनुभव में आ जाए तो फिर हमारा जीवन सफल हो। अब ये सब जानते हुए भी कि आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा में कोई दुख नहीं, फिर भी सब दुखी हैं, ऐसा क्यों? ये जानते हुए भी कि सुख का रास्ता ये है, फिर भी हम दुख की ओर भागते हैं, ऐसा क्यों? साधना की कमी। साधना क्या है? देखो, इसका जितना सुंदर निरूपण श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है कि हम क्यों नहीं असलियत को जान पाते, हम क्यों नहीं जीवन में तत्व से एकाकार होकर अमरत्व को प्राप्त होते, उपनिषदों में भी वही बात कही गई है, लेकिन भगवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही उपनिषदों की बात, उपनिषद जीवन की संभावनाएं हैं और भगवत गीता उन संभावनाओं को यथार्थ रूप देती है कि जो संभावनाएं हैं वो सचमुच में जीवन में चरितार्थ हो जाएं, हम उसको अपनाएं हैं तो जो उपनिषदों में कहा गया है उसका अनुभव हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय के आखिरी पांच श्लोक, उनमें सारी साधनाओं का सार है और जीवन की सफलता का रहस्य है। अगर कोई भी व्यक्ति उनको अपनाकर जीवन में अपने आप को नियंत्रित करता हुआ अध्यात्म के रास्ते पर चले तो सफलता निश्चित ही है। ये प्रसंग तो शुरू होता है अर्जुन के एक प्रश्न से। अर्जुन भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि क्यों अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरसि पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित। क्यों व्यक्ति जानते हुए भी और ना चाहते हुए भी कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे पाप की ओर ले जाती, बलात इव, जबरदस्ती जैसे घसीट कर किसी को कोई ले जाता है, अर्थात कौन सी वो शक्ति है जो हमें सत्य से वंचित कर देती। जब ये कहा जाता है कि क्या ऐसा है जो हमें पाप में नियुक्त करता है, तो उपनिषदों की भाषा में तो पाप एक ही है, स्वरूप को ना जानना, दूसरा कोई पाप ही नहीं। दोष एक ही है, स्वरूप को ना जानना, अज्ञान का नाम स्वरूप को ना जानना, नरक क्या है स्वरूप को ना जानना, उपनिषदों में कोई दूसरा वाक्य ही नहीं। जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना कुछ भी आप नेगेटिव कह लो या माया कह लो, पूरा माया का क्षेत्र क्या है, स्वरूप को ना जान। जिसने जान लिया उसके लिए ना कोई माया है, ना कोई दुख है, ना कोई काम क्रोध है, ना कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना बेगाना। लेकिन उसी बात को जिसको उपनिषदों की भाषा में स्वरूप ना जानना कहते हैं, स्मृतियों में और पुराणों में उसे पाप वृत्ति कहा गया। तो यहां अर्जुन का ये जो प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तो, कौन सा ऐसी शक्ति है जो हमें पाप की ओर ले जाती, अर्थात उस तत्व को नहीं जानने देती जो हर समय अपने पास है, कहीं ये भी नहीं कि बाहर जाना है, भी हमारे में, पास भी हमारे में है, जानते भी हम उसको हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उससे हम एक नहीं हो पाते। उपनिषद ने उसका रास्ता कि क्यों हम उसको नहीं जान पाते, ओंकार का ठीक से ज्ञान ना होना। वो कहेंगे ओम को ठीक से जान लो तो आप पार हो जाओ। उस ओम में वो आ ऊ और मां, इन तीन मात्राओं को लेकर सारी व्याख्या कर देंगे पूरे के पूरे शास्त्र की, जिसकी गीता के इन श्लोकों ने सीधे सीधे शब्दों में व्याख्या की। अर्जुन के ये पूछने पर अब देखो, हम ये दो तीन दिन जो रह गए इसमें साधन की बात कर रहे हैं। साध्य क्या है वो आज तक किया। साध्य बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छी हैं, जितनी भी हम सुनते रहें अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो अच्छा है वो प्राप्त कैसे हो, क्योंकि इसके ओर कभी हमने प्रयत्न भी नहीं किया और किसी को उसकी जरूरत भी नहीं, इसलिए वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी शास्त्र की मर्यादा अनुसार हमें उसके साधन का उल्लेख या चिंतन करना ही है कि क्यों नहीं वहां तक पहुंच। और देखो, ये जो प्रश्न है अर्जुन का कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें सत्य से विमुख कर देती है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें जबरदस्ती पाप की ओर ले जाती है, ये प्रश्न दुनिया की लगभग सभी जातियों में, सभी सभ्यताओं में सभी ने ये प्रश्न उठाया, और सभी धर्म गुरुओं ने, सभी दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से उसका जवाब भी दिया। जो द्वैतवादी हैं, बहुत से धर्म तो ऐसे हैं जो शक्तियां ही दो मानते हैं, क्यों पाप की ओर चलते हैं, वो कहते हैं एक शैतान है, एक खुदा है और एक शैतान। शैतान पाप की ओर हमें लगाता है, खुदा अच्छाई की ओर लगाता है, तो दोनों आपस में लगे हुए हैं। उन्होंने तो इस बात को इस तरह से कह के बात खत्म कर दी। तो हमें इन दोनों का झगड़ा है, और ये बात बहुत अधिक ईसाई धर्म में भी यही है, गॉड एंड सैटन। तो इस तरह से जिन्होंने कभी वो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा हो तो उसमें शैतान और ईश्वर का झगड़ा बड़े ठीक ढंग से दिखलाया गया कि कैसे। तो और धर्मों ने तो इसको ये कह के टाल दिया कि बुराई की ओर ले जाने वाला शैतान है और इसलिए हम बुराई करते हैं उसके प्रभाव में आकर। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण बहुत व्यवहारिक और बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं। उसके इस प्रश्न पूछने पर वो सीधी सी बात कहते हैं कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधे एनम ही वैरिणम। ये काम ही है जिसको क्रोध कहते हैं, वो भी काम ही है। काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध पैदा होता है और फिर आदमी क्रोध में कुछ भी करता रहता है, अपने आप भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी रखता है। तो उन्होंने इस बात को काम कह के ही खत्म कर दिया कि जहां कहीं भी असफलता है हमारी, क्योंकि हमारी रुचि काम की ओर है, इंद्रियों की तृप्ति की ओर है, मन की वासनाओं की तृप्ति की ओर है, हमारी रुचि सत्य को जानने की है ही नहीं। और जब तक ये बनी रहेगी, संसार की कोई शक्ति भी ऐसी नहीं है जो हमें तत्व तक ले जाए। देखो, गीता का ये वाक्य हमेशा याद रखे जो कोई भी साधक है, कि काम को उन्होंने महाशनों का मतलब होता है जिसकी भूख कभी मिटे ही ना, जितना देते चले जाओ और खाता चला जाए। अग्नि से इसकी तुलना की गई, आग में जितनी भी आहुतियां देते चले जाओ वो भड़कती चली जाएगी जब तक कि आग भी खत्म ना हो जाए और घी भी खत्म ना हो जाए। आज के युग में बहुत प्रचार हुआ है इन बातों का कि काम की पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो लोग बीमार हो जाते हैं, नहीं तो ये हो जाता है। लेकिन आज तक काम की पूर्ति के बिना कोई मर गया हो या कोई पागल हो गया हो देखा नहीं गया। जितने भी पागल हुए हैं या मरे हैं वो कामासक्त ही मरे और पागल भी वही हुए। लेकिन कुछ आचार्यों ने, कुछ लोगों ने आज के युग में थोड़ा मनोविज्ञान का सहारा लेकर के काम की पूर्ति होनी चाहिए, काम नहीं तो बीमारियां फैल जाएंगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो विकृति हो जाएगी। उनसे कोई भी पूछे कि विकृति वालों में कभी कोई मीरा का नाम, नानक का नाम, बुद्ध का नाम किसी का तो बतलाओ कि इनमें कोई विकृति हुई हो। तो जितना जितना ब्रह्मचर्य से हटते चले जाएंगे उतना उतना पतन की ओर गिरते चले जाएंगे, इसमें उम्र का कोई सवाल नहीं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सारी मुसीबतें कहां से हुई, केवल एक ही शब्द कामेश, क्रोधेश। जो काम है वही क्रोध है, क्योंकि क्रोध कभी होता ही नहीं काम के बिना। काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है, नहीं तो क्रोध का कोई अर्थ नहीं। दूसरे अध्याय में बहुत ही ठीक ढंग से ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते, वहां से उन्होंने शुरू किया कि विषयों का चिंतन करने से ही पतन के सड़क पर हम चल पड़े। इनका चिंतन होते ही समझो हम ऐसी सड़क पर चल पड़े जो सत्य के विपरीत है, हम कभी सत्य तक या सुख तक पहुंच भी नहीं सकते। यहां पर भगवान उसी बात को यहां पर दोहरा रहे। ये जो तीसरे अध्याय के आखिरी पांच श्लोक हैं, अर्थात 39, 40, 41, 42, 43 वाला, ये थोड़े विचारणीय हैं। यही इस उपनिषद का ही नहीं, सभी उपनिषदों का साधना पक्ष है। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन, इस काम ने क्या किया हुआ है, ज्ञान को आवृत कर दिया है। ज्ञान का मतलब सत चित आनंद, आपकी आत्मा। आत्मा क्यों नजर नहीं आती और विषय क्यों नजर आते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा को ढक दिया है इस काम ने। आवृतम ज्ञानम एतेन, इसके द्वारा ज्ञान आवृत हो गया। और उस पर उन्होंने बतलाया जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, अग्नि वही है लेकिन धुआं है, आत्मा वही है लेकिन मन रूपी वासनाएं धुआं है, वो उसको ढक देती है, आत्मा नजर नहीं आता। जैसे शीशे को मट्टी ढक देती है, जैसे गर्भ को जेर की झिल्ली ढक देती है, ऐसा ऊपर एक श्लोक में उन्होंने बतलाया। मुख्य बात केवल इतनी है कि आवृतम ज्ञानम हेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ये जो काम है ये साधकों का नित्य वैरी है। नित्य वैरी का अर्थ होता है, देखो जो साधक नहीं है उनका ये नित्य वैरी नहीं है, क्योंकि काम के भोग के समय ये उनको अपना मित्र लगता है, बड़ा अच्छा है, ये बाद में वैरी लगता है। तो जो साधक नहीं है उनका तो ये भोग के समय मित्र है। नित्य वैरी का मतलब होता है भोग के समय भी वैरी है, उसका चिंतन करते हुए भी वैरी है और बाद में भी वैरी। ज्ञानी तो ये जानता है कि इसमें दुख ही दुख है लेकिन फिर भी कभी न कभी फंस जाता है, संभावना है फंस जाने की। कदम इंसान का राह दहर में थर्रा ही जाता है, चले कोई बच के कितना फिर भी ठोक कर खा ही जाता है, कहीं ना कहीं फिर भी गिर ही जाता है। लेकिन साधक के लिए, साधक के लिए तो ये नित्य वैरी, जिसको पता हो अपने शत्रु का और फिर भी वो उसके पीछे जाए, वो साधक नहीं है, साधक कहलाने का हकदार भी नहीं। उसको कभी भी इस बात भूल कर भी नहीं सोचनी चाहिए कि मैं साधना में सफल हो जाऊंगा। और रजनीश को पढ़ के या और इस तरह के आचार्यों को पढ़ के कोई सोचे कि इसमें नहीं तो विकृतियां हैं, वो हैं, ये है, ऐसा है, कोई एक भी साधक आपको दुनिया का नहीं मिलेगा जो काम का भी साथी हो और राम तक भी जा पहुंचे। सभी ने काम और राम को दोनों एक ठाव पर रह नहीं सकते कभी भी। जैसे सूरज और रात का कोई आपस में मेल नहीं है, ऐसे ही काम और राम का भी

आपस में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्ञान ही एक वो आपके पास यंत्र है जो इनको अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखला देगा। तो आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का, साधकों का, भक्तों का, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का तो ये नित्य वैरी है। और ये काम रूप, नाम भी उसका बता दिया, कौन नित्य वैरी है, ये काम। और दुष्पूरेन, ये कभी इसकी पूर्ति नहीं होती, जैसे अनिलेन, जैसे आग कभी भी शांत नहीं होती आहुतियां डालने से और प्रज्वलित होगी, वैसे ही ये। और उसका कारण उन्होंने ऊपर बतला ही दिया, रजोगुण समुद्भवा। ये कारण नहीं बतलाया कि भाई कोई शैतान है या माया इसको का चक्र है, ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं रजोगुण, कोई एक बहुत ठीक तरह की बात जो हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले सोची, प्रकृति और प्रकृति के तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। और ये तीनों के तीनों गुण ही जीवन का अधिक संचालन करते हैं। शास्त्र हमारे, उपनिषद, बाकियों की बात नहीं मैं कर रहा, उपनिषद इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात करते हैं, गुणातीत। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो इन तीनों गुणों में सामंजस्य, बैलेंस बना के चलो। बैलेंस बना के चलो वाली बात अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि सारे व्यवहार भी चलेंगे, कारोबार भी चलेगा, काम का भोग भी करेंगे और राम भी मिल जाएगा। लेकिन ये कभी आज तक हुआ नहीं। ये बात सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने इन दिनों में उपनिषद का चिंतन किया है और उपनिषद समझौता नहीं करता कि उपनिषद आपको ये ढंग बतलाए कि बाल बच्चे भी पालते रहें और उनके बीच में भी मैं रहूं और घूमते फिरते सारे हम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएं, ये उपनिषद नहीं कहेगा। ये और कथाएं हैं बहुत सी, उनका हम अध्ययन करें तो ये बातें मिल जाएं। उपनिषद गुणातीत की बात करते हैं, गुणों में सामंजस्य स्थापित करने की बात नहीं करते। व्यवहार चलाने के लिए समृतियां हैं, मनु समृति है, प्राचर समृति है, वो समृति। पौराणिक कथाएं हैं व्यवहार चलाने के लिए, वो सब बाकी सब ग्रंथ हैं उपनिषदों को छोड़कर, क्योंकि उपनिषद तो व्यवहार जो संसार को ही स्वप्न समझा रहे हैं, व्यवहार का है। स्वप्न का व्यवहार क्या, स्वप्न में हमने बहुत बढ़िया व्यवहार कर लिया या बुरा, स्वप्न का संत और स्वप्न का डाकू दोनों बराबर के हैं, क्योंकि जाग गए तो न डाकू है न कोई। तो उपनिषद समझौता नहीं करते, लेकिन बात को समझने के लिए एक सहारा देते हैं। ये बात अच्छी लगती है कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी इस गुण में, कभी उस गुण में, कभी उस गुण में झूला झूले, बड़ा आनंद आता है, कभी सो गए, कभी उठ बैठे, कभी स्वप्न देख लिया। इसी को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। जागृत को सत्वगुण कहते हैं, स्वप्न को रजोगुण कहते हैं, सुषुप्ति को तमोगुण कहते हैं। और हम जिस तत्व की बात करते रहे हैं उन तीनों गुणों से परे, जिसको तुरीय कहा बार बार, जिसके लिए आपने अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम ऐसी ऐसी बातें कही, वो इन गुणों की पकड़ में नहीं। ये कोई भी गुण ना उसको छू तक नहीं सकता। जब हम उससे अलग होके इनमें आ जाते हैं, इस झूले में, या सीधा सा शब्द का प्रयोग करो, जब हम वासनाओं में आ जाते हैं, तो फिर हमें ये ग्रंथ और ये बातें अच्छी लगती हैं। मुख्य बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये तीनों ही गुण सारा कुछ सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और गीता में भी ये कहा, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सचित,
गुण ही

0: स्वप्नों में वर्त रहे हैं, तू अलग हो जा, आत्मा की तरफ ध्यान दे। गुणों के साथ तादात्म्य करके तू अपने आप को सुखी दुखी ना मान।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिवस्तोत्रम। द टाइटल इज चंद्रशेखराष्टकम, सङ्ग् बै शिव अरविंद राजगोपालन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि सन्निधिं क्रियात् विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षशस्त हस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षि कलित विपंची विभासि वैरिंची वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः स्फटिक रजतवर्णम् मोक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलश विद्या ज्ञानमुद्राकराग्रे दधत मुरगकक्षम् चन्द्रचूडम् त्रिनेत्रम् विधृत विविधरूपम् दक्षिणामूर्तिमीडे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिव समारंभाम् व्यास शंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम् वंदे गुरु परंपराम्।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

तुम तो प्रभु, और तुम्हारे बारे में तो हमने यही सुना है, तुम कोटि सूर्य प्रभा, आपके बारे में तो खुद आप में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, और वो रोशनी वो प्रकाश आपका स्वरूप है, तो क्या आपके सामने मूला विद्या, तो क्या तुला विद्या, तो क्या मूला विद्या भी टिक नहीं सकता। फिर भी कारण क्या है कि आज तक तुला विद्या मूला विद्या दोनों ही अविद्या टिकी हुई है? तम तो प्रभो त्रिभुवन एकमय स्वरूपी पर्याप्त शक्तिरपि पूर्ण कृपारण भोपी। आप में तो पूर्ण कृपा का, आप तो पूर्ण कृपा का सागर हैं, ये भी शास्त्र कह रहे हैं एक स्वर से, गुरु आचार्य उपनिषद शास्त्र सब कहते हैं कि भगवान शिव परमात्मा कृपा के सागर हैं। और जब कृपा के सागर आप हैं तो एक छींटा मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है, बोलो? वह कृपा का सागर है, हमें सागर में डूबना नहीं है, आपकी कृपा का सागर, एक चिंगारी एक छींटा भी हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मृत्यु से बचने के लिए अमृत एक लोटा चाहिए कि एक बूंद चाहिए? कितनी अमृत चाहिए बोलो? मृत्यु से बचने के लिए अमृत गिलास भर नहीं चाहिए, कितना चाहिए? एक बूंद भी ज्यादा है भैया, एक बूंद का भी सौवा हिस्सा हो ना तो भी काम चल जाएगा। अमृत तो अमृत है, ज्यादा अमृत से ज्यादा जिंदा रहेगा, कम अमृत से कम जिंदा रहेगा, ऐसा है क्या? अमृत तो अमृत है, और अमृत के बारे में तो यह कहा गया है वो जिंदे को ही अमृत काम करता है कि मरे को भी, मरे का को जो मरे हुए हैं उनमें भी काम करे तभी उसका नाम अमृत है। जिंदो तो जिंदे ही हैं, उनको क्या अमृत की जरूरत है? मरे को भी काम करे। अमृत का महिमा तो यह है भाई, हमने तो कई बार सुना है, और इस शिवजी के बारे में एक कथा बहुत प्रसन्न है। अब आप लोग तो सब बूढ़े हो चुके हो, पढ़ नहीं सकते हो, एक किताब है 1,00,000 श्लोक का, कितने श्लोक का? उस किताब का नाम है सुभाषित रत्न भंडागार, सुभाषित रत्न भंडागार, सुभाषितों के रूपी रत्नों का खजाना, भंडागार माने खजाना भंडार। ऐसे ऐसे विलक्षण श्लोक हैं, ऐसे सुभाषित हैं। वहां एक प्रसंग आया है, एक समय की बात है, भगवान विष्णु महाप्रलय हो चुका था, और महाप्रलय हो जाने के बाद सारे समष्टि जीव परमात्मा में लीन हुए हुए थे। परमात्मा में लीन होने के कारण जगत नहीं था, जीव भी नहीं थे, क्योंकि कोई भी जीव नहीं था तो जगत किस लिए, सब प्रलय हो चुका था। तो विष्णु को पालन करने की ड्यूटी भी खत्म हो चुकी थी, कोई होता तब ना उसकी रक्षा करना था। देखो इस धरती में एक चींटी का भी प्रारब्ध बचा होगा ना, पूरी धरती को बनाए रखना पड़ता है उस चींटी के लिए भी, ये नियम है। ये धरती केवल तुम्हारे लिए नहीं बना है, एक चींटी भी इस धरती में जिंदी है तो उसी के लिए भी आकाश वायु तेज जल धरती सब व्यवस्था परमात्मा को करनी पड़ती है।

0: उसका प्रारब्ध समाप्त जब तक नहीं होगा तब तक व्यवस्था करनी पड़ती है। और महाप्रलय तभी होता है किसी भी जीव का कोई भी प्रारब्ध बचा नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है, तब महाप्रलय करना पड़ता है। महाप्रलय हो चुका था इसीलिए किसी का पालन और संरक्षण करने की ड्यूटी काम भगवान विष्णु को नहीं था, इसलिए हॉलीडे वैकेशन। भगवान विष्णु का क्या चालू हो गया? वैकेशन चालू हो गया, हॉलीडे हो गया, छुट्टी फ्री। अब सबका संहार हो चुका था इसलिए भगवान शिव भी फुर्सत में थे। शिव थे कैलाश में, विष्णु थे वैकुंठ में। शिव जी ने विचार किया, देखो अपनी जो कला होती है कला का हमेशा अभ्यास करे रहना पड़ता है। एक बार सीख लिया करके चुपचाप बैठने से वो कला फलीभूत नहीं होती है। महाप्रलय करते हैं भगवान शिव, तो प्रलय करने के लिए क्या करते हैं? तो तांडव नृत्य करते हैं। और जब वो तांडव नृत्य में लग जाते हैं दिगंबर होकर, तो फिर महाप्रलय हो जाता है, सारा सृष्टि खत्म हो जाता है। हाँ, तो प्रलय सृष्टि तो प्रलय तो हो चुका था, खत्म हो गया था, फिर भी दूसरे प्रलय के लिए अभ्यास करे रहना चाहिए कि नहीं? प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस बोलते हो ना। हाँ, इसीलिए नीतिकारों ने कहा अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या भी खुद पढ़ी हुई विद्या भी नित्य निरंतर उसका अभ्यास करते रहोगे तो वो फलीभूत होगा, और अभ्यास छोड़ दोगे तो वो विष का जहर का काम करता है। अनभ्यास विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य है। किसी भी मीटिंग में कोई दरिद्र आवे तो एक गाठिया और जलेबी खाना न देवे, उस सभा किस काम का? आज तो हमारे चुमन भाई के शरीर का हैप्पी बर्थडे टू ए चुमन भाई, जियो सत जियो जुग जुग जियो भाई, जीवेम शरद असतम प्रभ्रवाम शरद, बिस्तरे में पड़ के नहीं जीना, चलते हुए जीना, 100 साल तक जियो और चलते हुए जियो। श्रृणुयाम शरद असतम, सत्संग सुनते हुए 100 साल तक जियो। अधीन श्याम शरद असतम, शास्त्र को पढ़ते हुए 100 साल तक जियो। ये हमारे वेद के वाक्य हैं। हाँ, चिमन भाई का शरीर का आज जन्म जयंती है। चिमन भाई का नहीं है ये बात, उसको तो पैदा ही नहीं हुए है, चिमन भाई का शरीर पैदा हुआ, चिमन भाई पैदा नहीं हुए। हाँ, घट बनता है, घटाकाश नहीं बनता, शरीर पैदा होता है, शरीरी पैदा नहीं होता। तो आज सुबह हमारे चिमन भाई के शरीर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फाफड़ा और जलेबी, गाठिया जलेबी खाने को मिला था। है तो प्रसंग क्या था? अनभ्यास विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। भोजन यदि ज्यादा खाया वो पचा नहीं तो वो जहर का काम करता है, वो जहर में परिणत हो जाएगा तुरंत। विषम सभा दरिद्रस्य, मीटिंग हो और ईटिंग न हो तो वो सभा किस काम का? इसलिए एक महात्मा बोलते थे पहले मीटिंग करो उसके बाद ईटिंग करो फिर चीटिंग करो। मीटिंग होता ही चीटिंग के लिए है? और संसार सब चीटिंग में चल रहा है, सारा मीटिंग ईटिंग और चीटिंग में चलता है। ईटिंग करो चिटिंग करो बस काम खत्म। और एक मीटिंग से पूरा नहीं हुआ तो फिर सेकंड सिटिंग करो सिटिंग करो दूसरा सिटिंग। तो कह रहे थे कि भगवान शिव अभ्यास कर रहे थे अपने महाप्रलय करने की विद्या का। भगवान विष्णु ने विचार किया कि फुर्सत में है कैलाश जाएं शिव जी से मिल लेते हैं मुलाकात हो जाएगी कुशल क्षेम पूछ लेंगे बहुत दिन हो गया है हमारा भी काम नहीं है शिव जी का भी काम नहीं है जाते हैं शिव जी के यहां। गरुड़ में चढ़े और भगवान विष्णु पहुंच गए कैलाश समझे नहीं। और कैलाश की जो शिव जी का अपना गुफा है उसके बाहर गरुड़ को उतारा गरुड़ को कहा कि तू दाना पानी चूमने जा और भगवान शिवा अंदर जाने लगे तो नंदी ने रोक दिया कि आप जाना नहीं अंदर। बोले क्यों? बोले शिवजी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा भाई जाकर कह दो वैकुंठ से विष्णु आए हैं दर्शन करने के लिए कह सकते हो ना? बोले हां ये बात तो मैं कह दूंगा। नंदी जाकर कह दिया कि भगवान वैकुंठ से विष्णु भगवान आए हैं आपके दर्शन के लिए। अरे विष्णु आए हैं? फटाफट उन्होंने कपड़ा पहन लिया। उनके कपड़ा तो आपको पता ही है ना, दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे। हाथी की जो चमड़ी थी वो खूंटे में रखा था फट से निकाला और कमर में लपेट ली। और क्योंकि कुछ सूखा हुआ को कपड़ा था ज्यादा ही सूख गया था कड़क था एक सर्प उठा लिया और उसी से बांध दिया। आप लोग बेल्ट बांधते हो ना? हाँ, उन्होंने बांध दिया कस के बांध दिया। और क्योंकि तांडव करते समय जटा खोलनी पड़ती है नृत्य करते समय जटा खोला था फिर उसको भी संभाल लिया तो बांधना है जटा बांध ली। तो आप लोग रबड़ से बांधते हो ना अपने केस क्या बोलते हो उसको रबड़ बैंड चलो जो कुछ भी कहो। और जटा को बांधने के लिए भी एक सर्प उठाई उसे बांध दिया जटा भी बांध ली कपड़े भी बांध दिया कमर में। अब विष्णु के पास जाना है तो थोड़ा सा भस्मी भूस्मी लगा ली मेकअप कर ली और गए विष्णु बाहर। भगवान विष्णु पेड़ के नीचे बैठे थे मयूर वहीं पेड़ के आसपास में है गरुड़ गरुड़ मरुड़ नहीं विष्णु का वाहन तो गरुड़ है गरुड़ ध्वजा गरुड़ वाहन गरुड़। और गरुड़ वहीं कुछ खोज रहा था दाना पानी तब तक शिव जी आ गए बाहर। गरुड़ ने देख लिया किसको? सिर के भगवान शिव के सिर में बैठे हुए सर्प को। और आपको तो पता है ना गरुड़ और सर्प बाप एक ही है मां दो हैं पता है ना दोनों भाई हैं लेकिन बाप एक है मां दो है कद्रु और बीनता है कश्यप ऋषि के कद्रु और बीनता। बीनता का पुत्र गरुड़ बैनतीय कद्रु का पुत्र सर्प नाग। ये दोनों की बड़ा दुश्मनी है। कद्रु ने ठग लिया था बीनता को तब से गरुड़ ने यह मान लिया था कि इस सर्प जाति को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब जहां भी सर्प को देखा गरुड़ ने कि झपट मारता था। शिवजी के सिर में बंधा हुआ जो सर्प है उसको देख लिया गरुड़ ने। अरे तेरी ये हिम्मत शिवजी के सिर में बैठा है वैकुंठ से विष्णु को ढोकर आते समय मुझे कितनी भूख लग रही है, अभी तक खाने को नहीं मिला है, तू वहां बैठा है। गरुड़ ने जब से देखा तो सर्प ने भी देखा कि इसने मुझे देख लिया, अब छोड़ेगा नहीं ये, लेकिन ये मुझे खावे, मुझे पकड़े, इससे पहले मैं अपने जीवन की रक्षा सेफ्टी करनी चाहिए, कैसे करूं। तुरंत तो सोचा, भगवान शिव ने यहां चंद्रमा रखी हुई थी, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, सोम, सोम माने अमृत। गरुड़ आवे और सर्प को पकड़े, तब तक तो सर्प ने यहां अपना फण मार लिया, किसमें, चंद्रमा में, बस बोले अब मैं अमृत पी लूंगा तो फिर चाट लूंगा तो ये गरुड़ मेरा क्या बिगड़ेगा। जैसे फण मारी वो चंद्रमा से अमृत टपक गया, अमृत का बूंद टपका कहां, भगवान शिव के शरीर में, शरीर से जाकर वही जो हाथी का जो चमड़ा था उसमें जाकर लग गया। अब तो तमाशा देख लो, वहां वो जो अमृत भगवान शिव के शरीर में जो भस्मी लगाया था, चिता भस्मी, जिन जिन व्यक्तियों के जलकर वो चिता बना था वो सब जिंदे हो गए, अमृत का स्पर्श हो गया, वो तो सब जिंदे हो गए अमृत के कारण। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं था, वो जो अमृत का बूंद जो चमड़ी में पड़ गया, हाथी तो जिंदा हो गया, हाँ अमृत पड़ गया ना, अमृत का बूंद पड़ते हाथी जिंदा हो गया, वो तो घास चरने के लिए चला गया। भगवान को पता ही नहीं, शिवजी को पता ही नहीं है क्या हो गए शिवजी, उनका कपड़ा जिंदा हो गया और घास चरने के लिए चला गया, तो शिवजी क्या हो गए, दिगंबर हो गए, दिगंबर, उनको तो पता ही नहीं है। भगवान शिव नजदीक आए, शिवजी के सामने हाथ जोड़कर, विष्णु के सामने हाथ जोड़कर शिव ने कहा, अरे महाराज आप वैकुंठ से आप आए हैं, हमको ही बुला लेते, हम ही आ जाते, बड़ा कष्ट किया आपने, आइए आइए, स्वागत करने गए। अरे भोले बाबा ये तो ठीक था, ये सब फॉर्मूले तो ठीक है, फॉर्मेलिटी आप जो कह रहे वो सब ठीक है, लेकिन कुछ कपड़े तो पहन लिया होता, ये क्या हाल बना रखा है दिगंबर हैं? बोले नहीं नहीं कपड़ा पहन के आए। बोले कहां है कपड़ा, देखा तो दिगंबर, ये कहां गया मेरा कपड़ा, बोले आपका कपड़ा तो वो घास चर रहा है, ये कैसे हो गया। शिव जी कहने लगे ये कैसे हो गया, बोले महाराज आपने जो सिर में चंद्रमा रखा था और सिर में ही जो सर्प बांध रखा था, मेरा बहान गरुड़ ने देखा और गरुड़ से डर के मारे वो सर्प ने वो अमृत में चोंच मारी, तो वहां से जो अमृत गिरा और उस चमड़ी में पड़ा तो वो तो जिंदा हो गया चला गया। केवल वो नहीं, आपने जितने भी मनुष्यों की राख लपेट रखी थी, शरीर में जो विभूति रखा था, जिन जिन व्यक्तियों का जो राख था वो सभी जिंदे हो गए, देखो ना वो फौज। अरे शिव जी तो, अरे ये क्या, ये तो अमृत का कमाल है। बोलो अमृत किसके लिए काम आता है, मरे के लिए कि जिंदे के लिए, हैं? उसी का नाम अमृत है जो मरे को भी जिंदा करे। तम तो प्रभो त्रिभुवनैक महेश्वरोपी पर्याप्त शक्तिरपि पूर्ण कृपारणवोपी आक्रंदतोपि करुणं विधि वंचितस्य त्यक्तादरोऽसि मम दर्शन मात्र केऽपि। कारण क्या है, आप इतने समर्थशाली होते हुए भी मुझे आज तक दर्शन भी नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है। तो बोले जरूर आपने तिरस्कार किया, त्यक्त आदर, मेरे बारे में आपने तिरस्कार कर दी और आपके मन में ही संकल्प नहीं हुआ, तो क्या मैं आपकी क्षमता उतनी जो चिंतामणि है उतनी भी नहीं है ऐसा मानूं। आप में तो कृपा अर्णव है, करुणा वरुणालय है, आप साक्षात चिन्ह मूर्ति हैं, और चिन्ह मूर्ति जड़ चिंतामणि में इतना क्षमता है तो आप तो चैतन्य हैं, तो मेरे ऊपर दया और कृपा आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं चिंतामणि के शरण में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि चिंतामणि संसार के सारे वैभव दे सकता है लेकिन अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता। कल्पवृक्ष सब भोग साधन को दे सकता है, अनादि कर्म बंधन को नष्ट नहीं कर सकता, कामधेनु गाय सारे भोग समृद्धि को दे सकता है लेकिन जन्म मृत्यु के बंधन को उच्छेद नहीं कर सकता। इन सब का उच्छेद तो आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं। आपके सामने किसी भी हालत में मूला विद्या टिक नहीं सकती, फिर भी एक ही हृदय अंगुष्ट मात्र परिमाण का हृदय के अंदर आप रह रहे हो, मैं रह रहा हूं और उसी कमरे के अंदर ये अंधकार रह कैसे गया? मूला विद्या आप कृपा करो। एको बार जवांधवा क्षिति नभो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वा लोचन गोचरोपि भवति तम कोटि सूर्य प्रभ वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृग भविन मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीयमे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो अनादिकालीन मूल अविद्या है मत्तम अज्ञान रूपी अंधकार उसका व्यपनीय उसको हटा दो बस, और तभी हटेगा जब आप प्रसन्न हो जाओगे, आप कृपा करोगे। आगे का श्लोक आज सुबह चिमन भाई ने खूब इस श्लोक का प्रचार किया था, इसलिए इस श्लोक की पुनः व्याख्या में मुझे इतना समय लगाना पड़ा। अब आगे शंकराचार्य जी अपने भाव इस तरह व्यक्त करते हैं। हम स पद्म बनम समिच्छति यथा नीलांबुदम चातक कोक कोक नद प्रियम प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस्तथा चेतो वांछति मामकं पशुपते चिन्मार्ग्य मृग्यम विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलम कैवल्य सौख्य प्रदम। ये तीन श्लोक में शंकराचार्य जी ने 16 दृष्टांतों के द्वारा अपने भाव शिव जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। यहां कहते हैं हमसह पद्म बनम समिच्छति, राजहंस का हंस का भोजन ही है कमल, पद्म बनम कमल, हंस कमल खाता है उसका भोजन ही कमल है, कमल का फूल है, सरोवर में रहता है और वहां उत्पन्न हुए हुए सब कमल का फूल ही उस हंस का प्रिय भोजन है। यथा माने जिस तरह हंस पद्म बनम समिच्छति, हंस भूख लगता है तो पद्मा माने कमल के वन माने समूह को समिच्छति ही चाहता है। नीलांबुदम चातक दूसरा दृष्टांत, ये पक्षी का ही दृष्टांत है दूसरा भी। चातक पक्षी जमीन के पानी को नहीं पीता, जब उसको प्यास लगता है तब नीलांबुदम नीले नीले बादलों को चाहता है, समझे कि नहीं? नीलांबुदम चातक, चातक पक्षी यथा नीलांबुदम बादलों को चाहता है। कोक कोक नद प्रियम, जिस तरह कोक नाम ये भी पक्षी का है, चकवा चकवा चक्रवाक चकवा बोलते हैं, चातक अलग है चकवा अलग है। चकवा पक्षी का एक नियम है कि चकोरी और चकवा, जब तक सूर्य रहते हैं तब तक साथ में रहते हैं, और उनका नियम है कि सूर्य अस्त हो गए कि दोनों की जोड़ी बिछुड़ गई। तो चकुआ माने अपने चकोरी से मिलने के लिए किसको चाहता है, कोक नद प्रिय, कोक कोक नद प्रिय, कोक नद माने कमल, कोकनद भी कमल है और उस कमल का प्रिय सूर्य, क्योंकि रोशनी होगी तभी वो अपने चकोरी को वो प्राप्त करेगा, अंधेरे में तो उसको अकेले रहना है। जब तक सूर्य उदय उदित नहीं होंगे, रोशनी नहीं होगी, तब तक वो अपने प्रियतमा को प्राप्त नहीं कर सकता वो, हाँ? इसलिए चकोर कोक कोकनद कोक चक्रवाक चकोर पक्षी हमेशा सूर्य का ही चिंतन करता है, रात भर सूर्य का चिंतन करता है कि कब सूर्य उदय, कब सूर्य उदित हो, कब सूर्य उदित हो, हैं? रात भर वही चिंतन करता है। कोक कोक नद प्रियम, कोक नद प्रिय सूर्य, कोक माने चक्रवाक चकोर, प्रतिदिनम ये देख लो, हमेशा रात भर उसी को चिंतन करता है। जब दिन होता है सूर्य उदय हो जाते हैं तो चकोरी उसको मिल जाती है, तो बड़े प्रेम से दिन भर उसके साथ खेलता है, रमण करता है, घूमता है, फिर शाम को जब अस्त सूर्य अस्त हुए कि बिछोड़े गया, तो रात भर वही चिंतन करता रहता है कि सूर्य कब उदित होंगे। कोक नद प्रिय, कमल के जो प्रिय हैं सूर्य उनको चाहता है वो पक्षी। प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस तथा, और चौथा पक्षी है चकोर, ये चार पक्षियों का यह दृष्टांत दिया। चकोर पक्षी को जब भूख लगता है वह चंद्रमा की ज्योत्सना किरणों को खाता है, उसका भोजन ही है चंद्र किरण, ये उसके अलावा और कुछ नहीं खाता है, खम्मन ढोकला नहीं खाएगा, रसपुरी नहीं खाएगा, श्रीखंड वासुदी नहीं खाएगा, क्या खाएगा वो, चंद्रमा से निकलने वाली ज्योत्सना चंद्र किरण वही उसका भोजन है। तब वह हमेशा चंद्रमा को चाहता है, चंद्रम चकोर चकोर पक्षी हमेशा रोज प्रतिदिनम चंद्रम समिच्छति, इसका अन्वय सब जगह करना। इसी तरह हे शिवा, चेतो वांछति मामकं पशुपते, एक पांचवां पक्षी मेरे पास है। पहला पक्षी हंस, दूसरा पक्षी का नाम चातक, तीसरा पक्षी का नाम कोक चकवाक, और चौथा पक्षी का नाम चकोर, एक पांचवां पक्षी मेरे पास है। वो जो पांचवा पक्ष जो तुम्हारे पास है वो क्या चाहता है। शिव जी पूछे, तुमने जो पाल रखा है पक्षी पांचवा, वो क्या चाहता है, है? चेतो वांछति मामकं पशुपते चिन्मार्ग मृग्यम विभो। हे विभो, हे पशुपते, चिन्मार्ग मृग्यम।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: परंतु आपके इंद्रियों का जो विषय नहीं ऐसा दुख आ जाए तो उसको सहन नहीं कर सकते, उस समय भगवान को पुकारे तो निश्चित ही भगवान हमारे दुखों को दूर करते हैं। पर उस समय हम क्या करते हैं, अपने संबंधियों को पुकारते हैं। स्वयं बेचारे ये मौत के खिलौने हैं, स्वयं तो दुखी हो रहे हैं, तो आपको सुखी कहां से कर सकते, आपके दुख को हरण नहीं कर सकते। इसलिए इससे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमें अपने जीवन के विषाद को हटाने के लिए भगवान शंकर का अवलंबन लेना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राध्याय में बार बार यह प्रार्थना की गई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन है, मंगलमय संकल्प करने वाला हो, शिव मतलब मंगलकारी संकल्प करने वाला होवे, क्योंकि मन ही मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सद्बुद्धि है वहां पर सारी संपत्तियां हैं, और जहां दुर्बुद्धि है वहां पर संपत्ति ही विपत्ति में परिणत हो जाती है। सारा संपत्ति आप घर में, यदि घर में एक जुआरी शराबी निकल गया, देखो सबको परेशान कर डालता है एक ही व्यक्ति। इसीलिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। चारों वेदों में जो सार गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र में भी केवल सद्बुद्धि की ही प्रार्थना की गई है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य, भर्ग शब्द का अर्थ स्वयं ज्योति रूप परमात्मा, और भर्ग शब्द का अर्थ भगवान शंकर भी होता है। विपत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द है। आप जिस देवता के उपासक हैं उसका अर्थ स्वभावतः निकल आता है। भ का अर्थ भवति यस्मात् इति भ, जिससे संसार होता हो उसका नाम है भ। और र जो है ना, भर्ग में जो र है, र का अर्थ रक्षति इति र, जिसके द्वारा संसार की रक्षा हो। और ग का अर्थ गति, जैसे सारे नदियों का सरोवर का गति है सागर समुद्र, वैसे ही महाप्रलय में सारे जीवात्माओं की गति ब्रह्म में होती है, भगवान शंकर में होती है। तो भरक का स्वयं ज्योति परमात्मा भी है, आप विष्णु भी अर्थ कर सकते, शिव भी कर सकते हैं, जिसका जो उपास है वैसा अर्थ निकल जाता है। ऐसे भर्गो दिवस, भर्ग देव का मैं ध्यान करता हूं, और मान लो आप बड़े भारी महापापी हैं, पाप को दूर करना हो, तो भर्ग का अर्थ है भर्जनात इति भर्ग। भर्जन मतलब कि जैसे एक जाति होती है जिसको बोलते हैं गौण जाति होती है, वह भर्जन का काम करता है। भर्जन मतलब कि चना को भूजना, चावल को भून के दाना बना लेना। जैसे कि भाड़ में भाड़ भूज अनाज को भूनता है, वैसे ही जो हमारे पापों को तापों को भून डाले, नष्ट कर डाले, ऐसे परमात्मा का नाम भर्ग है। तो अपनी दृष्टि के अनुसार भर्ग शब्द के अनेक अर्थ हैं। ऐसे भर्गो देव का मैं ध्यान करता हूं, स्वयं ज्योति परमात्मा का, जो हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए। क्योंकि जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। उपनिषद में जहां पर पांच पंच महापातकों की गिनती कराई है, वहां पर मांस भक्षण को महापाप में नहीं गिनाया, वहां पर शराब सुरापान को महापाप में गिनाया। स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबश्च गुरो तल्प आवसन चैते पतंति पंचमा तैसा आचरण। ये उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र है। स्तेनो हिरण्यस्य का अर्थ है जो दूसरे के आजीविका को चुराने वाला, ये प्रथम पात की महापात की है। दूसरा है व्यभिचार कर्म करने वाला, परा स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने वाला। तीसरा है ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्म मल्लक श्रेष्ठ पुरुषों की हत्या करने वाला। और चौथा है सुरापान जो करता हो, और पांचवा वह है जो चारों के साथ बहु बेटी का संबंध स्थापित करता है। आतंकवादी तो बाद में पकड़े जाते हैं, पर उसके संबंधी पहले पकड़े जाते हैं, व्यवहार में भी होता है। इन पांचों को महापात की कहा है। सुरापान में जीव हत्या नहीं। सुनाम धन्य पूज्य पादा खंडानी महाराज कहा करते थे कि शराब मल्लक की जल को सड़ा के बना दिया, वह शराब, परंतु सुरापान को महापातक में गिनाया। इसलिए गिनाया है क्योंकि शराब पीने के बाद सीधे हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। मनुष्य में पशु में अंतर केवल बुद्धि तत्व से है। ज्ञान बिन पशु भी समान। यदि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो आप पशु के समान है। तो जो हमारे अंदर बुद्धि तत्व है, उस बुद्धि तत्व को शराब तत्काल जाकर नष्ट करता है। इसलिए शराब को या सुरापाय को महापातकी में गिना है, मांस भक्षण को महापातकी में नहीं गिनाया है। क्योंकि मांस खाने से तत्काल या 10-20 वर्ष के बाद भी हमारे बुद्धि कुंठित नष्ट नहीं होती, वह तो एक खाद्य है, भोजन है जीव का। हाँ, जीव हिंसा जरूर है, परंतु महापातक नहीं है। परंतु शराब जो पीता है उसकी तत्काल बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको महापातक में गिनाया है। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में स्वयं कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट हो गई तो आपका सर्वनाश हो गया। जीवन में बुद्धि है, विवेक है, तो आप चाहे कितने भी निचले पायदान पर हो, बुद्धि से आप अपने ऊंचे मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए सुरापान को महापातक में गिनाया है। तो यहां पर बुद्धि की प्रार्थना किया है। तो हमारे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति दुख की घड़ी आए, उस समय हमें जैसे कि देवताओं ने, असुरों ने भी अपने सम्राट जो असुर पक्षपाती है बलि, देव पक्षपाती भगवान विष्णु, पर हमारे भगवान शंकर किसी के पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष देवता है। असुर उपासना करे तो उसको भी वरदान दे देंगे, भस्मासुर को दे दिया और स्वयं ही संकट में पड़ गए। ऐसे भगवान अवघरदानी आशुतोष शंकर भगवान है। सकलमास कंठे तव न कुरुते न श्रिय महो। वह जो भगवान शंकर के गले में कलमास मल्लक की जो नीला नीला जो हलाल बीस पान करने धब्बा पड़ा है, वो आपके ऐश्वर्य को शोभा को बढ़ाता है। जैसे छोटे बच्चे की माताएं श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार के बाद काजल जो है ना टीका लगाती है, उससे जो है उसके सौंदर्य में निखार आता है। वह जो काजल की जो टीका है ना, वह जो है कोई जो है शोभा को बिखेरता नहीं, बल्कि शोभा को बढ़ाता है। पिकारो पी श्लाघ्यो टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जाकर सुशोभित हो जाता है। यमाशितो बक्रोपी शोभते। दुर्बल से दुर्बल भी व्यक्ति राजा या महामंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहारे बड़े से बड़े पहलवान को भी दबा देता है, बिल्कुल दुर्बल। तो क्योंकि उसको सहारा प्रधानमंत्री का है, राजा का है। ऐसे ही चाहे हम धनहीन हो या बलहीन हो, कैसे भी हो, यदि हमारे जीवन में भगवान का आधार हो, हम भगवान को आधार बना लें, तो फिर ये संसार की समस्याएं हमें व्यथित नहीं कर सकती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थान में माघ कवि हुए हैं, कालिदास, माघ और बाण, ये तीनों अपने जमाने के महान कवि हुए हैं। कालिदास की उपमा और माघ की वाक्य विन्यास बड़ा ही सुंदर है। तो माघ कवि ये मालवा क्षेत्र के आसपास हुए हैं। एक बार बड़ा ही दुष्काल हुआ, दुष्काल पड़ने के बाद पत्नी ने बार बार कहा कि राजा आपको बार बार बुलाते हैं पर आप कभी नहीं जाते हैं, और इस समय आपकी प्रजा बहुत पीड़ित है जहां रहते हैं वहां, इसलिए आप कृपा करके राजा के पास जाइए। फिर भी पंडित जी ने मना कर दिया, क्योंकि पंडित का ऐश्वर्य है त्याग में, साधु ब्राह्मण का ऐश्वर्य त्याग में है। जब पत्नी ने बहुत कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी के हट को देखने के बाद मजबूरन माघ को राजा के पास जाना ही पड़ा। कई बार होता है ना, आप नहीं चाहते हैं परंतु श्रीमती जी की चाबी ऐसी घूम जाती है ना कि ना चाहने पर भी करना पड़ता है, हैं? ऐसे यहां पर भी पत्नी के हट के कारण से माघ कभी अपनी पोटली में चावल बांध कर चल पड़े। जब मालवा नरेश के पास पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, कई दिन तक उनको राज में ठहराया। राजा ने पूछा कि मैंने आपको कई बार निमंत्रित किया पर आप कभी नहीं पधारे, इस समय आने का क्या प्रयोजन है? माघ कवि ने साफ साफ बतला दिया, इस समय धन की इच्छा से आया हूं, क्योंकि हमारे गांव में बड़ा भारी अकाल है और हम अपनी पत्नी की प्रेरणा से यहां पर आए हुए हैं। राजा ने 10 घोड़ों में पूरा सामग्री सोना चांदी भरकर विदा किया। 10 घोड़े लेके माघ कवि आए रास्ते में, जहां रात को रुकते वहां पर सब जो है गरीबी से परेशान प्रार्थना करते कुछ हमें दे दीजिए। रास्ते भर में 10 घोड़ों के सारे सामान गांव में बांट दिए। अंत में जब घर पहुंचे खाली हाथ, पत्नी देखी कि हमारे पतिदेव घर में पधारे तो सही, परंतु मुख पर बहुत मालिन्य, बहुत उदासीनता, सिर नीचे करके बैठे। धर्मपत्नी समझ गई पति के पीड़ा को कि राजा ने बहुत कुछ दिया ही नहीं, परंतु रास्ते में सब जो है ये बांट करके गरीबों को वितरित कर खाली हाथ लौटे हैं। पत्नी ने कहा कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे बादल जलती हुई धरती पर वर्षा करके सिंचित करके प्रसन्न होता है, निर्मल शांत हो जाता है, और बादल किसी भी शोभा भी होती है, इसी प्रकार से आपने रास्ते के दीनहीन गरीबों को राजा के धन को बांटते हुए यहां पर पधारे, तो आप खाली हुए रिक्त विषय में आपकी शोभा है। आजकल की धर्म पत्नी होती तो क्या बोलती, बल्कि तुम्हारे पांडित्य को, विद्या को, ये दर्शन को धिक्कार है, सब बेकार है। इतना तो देखना चाहिए कि पत्नी भूखी है, घर में कुछ नहीं है, तुम रास्ते में लुटा के आ गए, सीधा ऐसे ही बोलती। पत्नी बोलती पहले अपने घर को देखो, बाद में गांव को देखो, फिर दूसरे को देखो। परंतु पत्नी भी ऐसी जो है पतिव्रता थी कि पति के भाव को समझ करके उनको पीड़ित नहीं किया। तो अकांड ब्रह्मांड ऐसे समय में भी यदि हम भगवान की सहारा लें तो भगवान निश्चित ही सहयोग करते हैं। वो पत्नी ने कहा, ये जो आपका कलमास, कलमास मतलब मुख मालिन्य, कि आप रास्ते में धन को वितरित करके जब घर पहुंचे तो उदासीन हो गए कि मैं कुछ भी नहीं लाया इनके लिए, जिनकी प्रेरणा से मैं राजा के पास गया, पत्नी की प्रेरणा से, बच्चों की प्रेरणा से, पर यहाँ आने के बाद खाली हाथ। यह जो आपकी उदासीनता या आपकी शोभा कलमा शोभा बना रहा है, ऐसी भगवान शंकर के गले में जो नीलिमा है, ये जो है समझो कि एक उनका प्रसिद्ध नीलकंठ नाम भी पड़ गया, शोभा बढ़ा रहा है। ऐसी हमारे जीवन में जब भी ये रात दिन रूपी मथाने जो चल रही है ना, इससे जब विषाद आए तो विषाद का जो धब्बा पड़ता है ना अंतःकरण में, अमुक ने हमें पीड़ा पहुंचाई, अमुक ने हमें कटु वचन कहा, अमुक ने तिरस्कार कर दिया, यह जो धब्बा है इस धब्बे से हमारे जीवन में निखार आता है और यह हमें सावधान करता है। शत्रु और मित्र में यही अंतर है कि सातनात त्रारणात शत्रु, जो आपको हर तरह से सावधान करके त्रांग मतलब रक्षा करे उसका नाम शत्रु है, और मित्र मान सम्मान करके सन्मार्ग में प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम मित्र है। तो यहां पर भी जो भगवान शंकर गले में कलमाश है वह शोभा बढ़ाता है, ऐसे ही इस जीवन में जीवो शिव एवं, जीव यदि अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, यह भी साक्षात शिव ही है, और अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो सब हो जाता है। सब मतलब कि जिससे कि सभी नफरत करते हैं, जब अंदर से शिव निकल जाता है तो इस शरीर से अपने स्वजन भी घृणा करते हैं, जल्दी हटाओ शमशान में ले जाओ। तो यह जो हमारे जीवन में विषाद है, यह हमारे जीवन को पवित्र करता है, निखार लाता है। भुवन भय भंग व्यसनिनः, भगवान शंकर का विशेषण है कि संसार के भय को भंग करने का व्यसन है, स्वभाव है। चाहे आपको जैसा भी भय हो, आर्थिक मंदी का भय, भय लोगों को सता रहा ना, बहुत आर्थिक मंदी आ गई, या किसी को सामाजिक भय हो, या मौत से भय हो, सारे भयों से अभय बनाने वाले, इसलिए भगवान शंकर का नाम एक अभयंकरा है, जय जय शिव सुंदरा और अभयंकरा, अभयंकर कहते हैं। एक दक्षिण भारत में सुंदर नामक भगवान शंकर के अनन्य भक्त हुए हैं, जैसे कि गुजरात में नरसिंह मेहता की कथा है कि नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, वैसे ही सुंदर नामक भक्त के लिए भगवान शंकर ने सब कुछ उसके लिए बन गए। तो सुंदर भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते थे। जब जवान हुए तो जवान होने के बाद इनके पिता का नाम था जटिल और माता का नाम था ज्ञानवती। दोनों ने सुंदर की सम्मति से एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या से विवाह प्रारंभ किया। जैसे ही विवाह की तैयारी हो गई, लग्न पत्री भी छप गई, बढ़ गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने में भगवान शंकर एक बूढ़ा ब्राह्मण का वेश बनाकर बहुत जीर्ण शीर्ण लाठी टेकते हुए विवाह मंडप में पधारते हैं। जब कोई इस प्रकार से ब्राह्मण आए बिना सूचना के, तो सभी स्वागत करते हैं। उनको देखकर सभी खड़े हुए, बच्चे तो ताली पीट के हंस रहे थे, बुढ़ापे पर अक्सर होता है, बूढ़े को देख के बच्चे बहुत हंसते हैं, कैसे वो खांकता है, कैसे वो लाठी टेक के कांपते हुए चल रहा है। हम भी बच्चे थे ना, हमको याद अपने बचपना की भूल, हम बूढ़े को बहुत चिढ़ाते थे, कंकड़ भी मारते थे हम लोग बच्चे मिल करके, जो क्रोध करे तो और खुश होते थे। तो बच्चे जो है ना बूढ़े को चिढ़ाते, यहाँ पर ये बच्चे तो चिढ़ा रहे। जब मंडप में पहुंचे तो बड़े बड़े लोग स्वागत किए, नमस्कार किए, उनका चरण धो करके जटिल ने कहा कि मैं बड़ा धन्य हूं जो आप शुभ मुहूर्त में हमारे यहाँ पधारे हैं, आप पधारने का कारण बतलाइए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना नाम श्रीकंठ बताया और कहा कि मैं यहाँ आया हूँ और यह मुझे बताओ कि ये सब समायोजन किस लिए हो रहा है। सुंदर के पिता जटिल ने कहा कि यह जो हमारा पुत्र है जिसका नाम कमल नाथ है और उपनाम है सुंदर, इसके विवाह की तैयारी चल रही है। श्रीकंठ ब्राह्मण ने कहा कि तुम भले न मुझे पहचानते हो पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम्हारे दादा को जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ और इस बच्चे को भी जानता हूँ, इसका विवाह होने जा रहा है। जब बार बार जटिल ने प्रार्थना किया कि आपके आशीर्वाद से हमारे सुंदर बालक का अच्छी तरह से विवाह क्रिया संपन्न हो, बस तुरंत ब्राह्मण देवता कुपित हो गए। बोले कि तू बड़ा झूठ बोलता है, ये सुंदर हमारा दास है, ये तेरा बेटा कैसे हुआ। भरी सभा में श्रीकंठ ने सबको संबोधित करके कहा कि देखो ये हमारा दास है, खरीदा हुआ है और इस दास को ब्याह करके अपना बेटा बनाना चाहता है। सारी सभा में सन्नाटा हो गई। सुंदर खड़े हुए, बोले कि मैं आपको जानता नहीं पहचानता हूं नहीं, आपका मैं दास कैसे, और ब्राह्मण तो कभी किसी का दास बन भी नहीं सकता, केवल भगवान का दास हो सकता है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा देख तेरे दादा की हमारे हाथ में पत्री है, तेरे दादा ने लिखा है कि मैं जम्बूपुर निवासी, दक्षिण भारत में जम्बूपुर एक नगर का नाम है, जम्बूपुर निवासी कमलनाथ का दास हूं, हमारे पुत्र पौत्र सभी इनके दास होंगे, उनका हस्ताक्षर है और लेख है। जब उसको देखा तो तुरंत पर्दे फाड़ के फेंक दिया। जब फाड़ के फेंक दिया तो वृद्ध ब्राह्मण और कुपित हो गए, बोले कि देखो इसका फाड़ना ही प्रमाणित करता है कि मेरा दास है, ये दास नहीं होता तो क्यों फाड़ा, राजा को दिखाना चाहिए, राजा सभा में बैठे हुए हैं। और कुपित होकर बोले कि देखो इस सभा में कोई भी न्याय प्रिय क्या ब्राह्मण नहीं है या कोई राजा नहीं मंत्री नहीं जो कि न्याय हमें दिला सके, ये मेरा दास है परंतु ये जटिल जो है ब्याह करा के अपना पुत्र साबित करना चाहता है। भयंकर विवाद हो गया, सभा में सन्नाटा छा गई। राजा बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले कि ब्राह्मण देवता आप शांत रहिए, इसका निर्णय यहीं पर हो या अन्यत्र, यह आपका दास है या जटिल का पुत्र। ब्राह्मण ने कहा कि यहां तो सब जो है दुर्नीति वाले हैं, किसी को नीति का धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसका निर्णय तो नवनीतपुर में होना चाहिए जहां वह विद्वान ब्राह्मण है। विवाह बंद हो गया, सभी वहां नवनीतपुर के लिए चल पड़े। वहां जाकर वृद्ध ब्राह्मण और जटिल दोनों आमने सामने हुए। राजा ने कहा कि आप अपना दस्तावेज पेश कीजिए कि आपका दास यह कैसे बना। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो इसने नकल तो फाड़ दी पर हमारे हाथ में इस नकल का असल ओरिजिनल कॉपी है, और ब्राह्मणों को पकड़ा दिया। ब्राह्मणों ने पढ़ा, कहा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं जम्बूपुर निवासी कमलनाथ, मेरे पुत्र पौत्र सभी जो है इस पित्त नामक ब्राह्मण के दास होंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि कोई तुम्हारे दादा की प्रतिलिपि हो तो मिलाकर देख लो। जब दूसरी कॉपी ला के मिलाए तो बिल्कुल मिल गया। अब तो जटिल और सुंदर का सिर झुक गया, बोले कि ठीक है हम हार गए आप जीत गए और मैं आपका दास। पर सुंदर ने कहा कि आपका घर द्वार कहाँ है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। ब्राह्मण ने कहा चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूं। अब सुंदर वृद्ध ब्राह्मण के पीछे पीछे जाता है। जब सुंदर ब्राह्मण पीछे पीछे चला तो ब्राह्मण जा करके भगवान शंकर के मंदिर में चला गया, अंदर से निकला ही नहीं। सुंदर ने कहा कि तुम जो है ना पागल हो गए हो, यदि तुम्हारा घर द्वार है तो अपने घर द्वार चलो, इस मंदिर में क्यों प्रवेश कर गए। जब जोर से क्रोध किया कि तुम भ्रांत ब्राह्मण हो, तुमने झूठ मूठ का मुझे ठगा है, दास बनाया है, मैं तुझे जानता भी नहीं, जल्दी से बाहर निकलो। पर अंदर कोई हो तब तो निकले, जब अंदर देखा तो भगवान शंकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, तुझे पता है तुझे उपासना करके और मुझसे वरदान मांगा था कि मैं संसार के चक्कर में न पड़ूं, और तेरी ब्याह हो जाती तो तू बता तू कहां पड़ता। इसलिए मैं जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप बन करके तुझे उस विवाह के बंधन से छुड़ाने के लिए सब नाटक किया था। तो देखो भगवान शंकर ऐसे उदार हैं कि भक्तों की हर तरह से रक्षा करते। ये तो आपको अधूरी कथा सुनाई, इसकी दूसरी कड़ी कल सुनाएंगे सुंदर की। प्रेम से बोली।

पाठक्रम से ये पांचवा है, अभी हमने चतुर्थ बताया किंतु ये पांचवा है। पांचवे मंत्र के ऊपर हम लोग कल कुछ विचार कर चुके। अदह और इदम शब्द का हम लोगों ने कल विचार किया। पूर्णम अदह,

चक्षुरादि इंद्रियों का जो विषय नहीं है वो भी पूर्ण है। और चक्षुरादि इंद्रियों से नहीं दिखता है का अभिप्राय है, जैसे घट देखते समय हमारी वृत्ति जैसे घटाकार होती है किंतु मृतिकाकार नहीं होती। घट देखते हैं किंतु मृतिका को नहीं देखते हैं। तो मृतिका स्थानीय जो परोक्ष ब्रह्म है वो पूर्ण है। जैसे मृतिका है वो क्या है, दृष्टांत से देखे तो जैसे उनको कहे कि वो पूर्ण है, घट में जो मृतिका है वो पूर्ण है। और फिर कहा इदम पूर्णम, इदम से अभिप्राय है जो अपरोक्ष यानी नाम रूप उपाधि से जो विशिष्ट है, यानी व्यवहार को जो प्राप्त है वो भी क्या है, पूर्णम है। जैसे दृष्टांत में घड़ा है वो पूर्ण है, ऐसा कहा घड़ा दृष्टांत में घटाते जाना है। मृतिका क्या है, पूर्ण है। फिर वो मृतिका ही व्यवहार को आपन्न हुई घटे के रूप में, घट बनाने मृतिका से। वैसे ये जो संसार है वो परमात्मा से बना है, ब्रह्म से बना है। इसलिए व्यवहार आपन्न या कार्य ब्रह्म कीजिए। नाम रूप उपाधि से जो विशिष्ट है वो लीजिए, अथवा त्वम पदार्थ रूप जिसको हम अहंत्वेन अनुभव करते हैं वो भी पूर्ण है। यानी ऐसा माने जो दृष्टांत में जो घड़ा है वो भी पूर्ण है। तो इस तरह से लक्ष्य रूप से, लक्ष्य से ब्रह्म पूर्ण है। आप कहेंगे कि ठीक है कारण ब्रह्म यानी मृतिका तो पूर्ण है, किंतु घड़ा कैसे, दृष्टांत में घड़ा कैसे पूर्ण हो सकता है। दृष्टांत में पूर्ण शब्द का योग करना है। जैसे मृतिका तो ठीक है किंतु घड़ा कैसे हो सकता है, घड़ा तो कार्य है। इस तरह से दृष्टांत में ये जो नाम रूपादि से विशिष्ट जो ब्रह्म यानी ये नाम रूपादि वाला जो संसार वो कैसे पूर्ण है, तो उसका कारण बता रहे हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसलिए पूर्ण से ही पूर्णम उदच्यते। जो नाम रूप उपाधि विशिष्ट जो संसार है वो भी पूर्ण है, किंतु कारण दृष्टि से पूर्ण है, वो कार्य दृष्टि से नहीं किंतु कारण दृष्टि से वो पूर्ण है। क्योंकि वो प्रकट किससे हुआ, पूर्ण से उत्पन्न हुआ। घड़ा भी पूर्ण है किंतु मृतिका दृष्टि से पूर्ण है, ऐसा कहा। जैसे कहा दृष्टांत में मृतिका भी पूर्ण है और घड़ा भी पूर्ण है, किंतु घड़ा को पूर्ण तभी कहेंगे कि मृतिका की दृष्टि से। घड़ा घड़े के रूप में नहीं किंतु

0: मृतिका के रूप में, किंतु क्योंकि मृतिका है वो पहले थी, घड़ा उत्पन्न होने से पहले थी और घट अवस्था में भी है और घट नहीं रहेगा तब भी वो रहेगी, इसलिए वो कारण है। तो कारण तो ठीक है, वो पूर्ण है, किंतु कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है, ये प्रश्न होगा ना। तो कार्य भी पूर्ण है किंतु कारण दृष्टि से पूर्ण है, कार्य कार्य रूप में नहीं किंतु कारण रूप में पूर्ण है। मृतिका भी पूर्ण है और घड़ा भी दृष्टांत में जैसे लोग पूर्ण है, किंतु वो घड़ा मृतिका के रूप में पूर्ण है, घड़ा घड़े के रूप में नहीं, क्योंकि घड़ा है वो मृतिका से उत्पन्न हुआ है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट हो जाता है। उदच्यते का अर्थ है उदृच्यते, जन्म होता है ऐसा नहीं कहेंगे किंतु प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। जैसे कि घड़ा मृतिका से ही उत्पन्न होता है, ये क्या कहेंगे, जो मृतिका है वो ही घड़े के रूप में दिखती है। ऐसे ही ये जो कारण ब्रह्म है वो ही कार्य रूप में प्रतीत होता है, जगत रूप में दिखता है, क्योंकि उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, ये कहेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि तो घड़ा का क्या होगा, नाम रूप का क्या होगा, तो देखिए नाम और रूप है वो वस्तु सत नहीं है। जैसे वो घड़ा है वो वस्तु सत नहीं है, किंतु मिट्टी है वो वस्तु सत है। इसको उपनिषद में दृष्टांत में ऐसे बताया, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नाम दे मृति कित्तिव सत्यम। उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को दृष्टांत के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि जैसे एक ही मृतिका के पिंड से बने हुए जितने भी घट शराब आदि है आकार, वो सब मृन्मयी है। घट है, शराब है, कुल्हड़ है, वो सब किससे बने हैं, मृतिका से ही बने हैं। तो जैसे एक मृतिका को जान लिया जाए, मृतिका का ज्ञान हो जाए तो घट शराब आदि का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। उनका भी हो जाएगा, क्योंकि घट शराब आदि की उत्पत्ति मिट्टी से ही हुई है, इसलिए मृतिका के ज्ञान से घट शराब आदि का भी ज्ञान हो जाता है। सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्याद, वो फिर बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि मृतिका से अतिरिक्त उसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए मृन्मयम विज्ञातम स्याद। तो फिर कहेंगे कि मृतिका में और घड़े में कुछ भेद तो जरूर है, जैसा कल आपको बताया था कि पानी भरना है तो मिट्टी में नहीं भर सकते, किसमें भर सकते, घड़े में ही भर सकते हैं। तो ये भेद नहीं होता तो ये थोड़ा होता। तो कहा वो जो भेद है वो केवल वाणी का आलंबन मात्र है, वस्तु से तो वो भेद नहीं है। वाचारंभणम, वाणी का आलंबन मात्र ही वो भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। नामधेय मृतिक इत्येव सत्यम, जो घड़ा है वो केवल उनको बोल सकते हैं लेकिन उनको आप सिद्ध नहीं कर सकते। मृतिका से घड़ा का भेद आप सिद्ध करने जाओगे तो आप उनको कर नहीं पाओगे। आप चाहे कि मृतिका को अलग कर दे, घड़े को अलग कर दे, तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। घड़े के अंदर से मिट्टी को निकाल लेंगे तो घड़े के कोई अपनी सत्ता ही नहीं रह जाएगी। वैसे ही समझ लो जैसे दृष्टांत है, इस तरह से आप संसार में भी घटाइए। ये जो उपाधि विशिष्ट संसार है वो घट स्थानीय है, या उपाधि विशिष्ट जो ब्रह्म भी कहा वो घट स्थानीय है, और निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो जिसको अदस्य कहा वो मृतिका स्थानीय समझ लीजिए। दृष्टांत साथ में रखना होगा इसके लिए। तो वो दोनों इस तरह से पूर्ण है, घड़ा पूर्ण है किंतु मृतिका दृष्टि से। ऐसी ये जो संसार है उसको कहा कि ये पूर्ण है, नाम रूप उपाधि विशिष्ट, वो भी उनके कारण रूप से पूर्ण है। यहां दो पूर्ण नहीं है, दो पूर्ण हो ही नहीं सकता है, एक ही पूर्ण हो सकता है। दोनों को यदि आप पारमार्थिक रूप से यदि पूर्ण मानेंगे तो आपत्ति क्या आएगी? दोनों की पूर्णता खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक जहां है वहां दूसरा नहीं है, दूसरा है वहां वो पहला नहीं है, तो दोनों में भेद हो जाएगा, तो दोनों पूर्ण नहीं कह सकेंगे। इसलिए यहां पे ये समझना है कि पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है, इसलिए कारण दृष्टि से ये सारा संसार पूर्ण है किंतु कार्य दृष्टि से वो केवल वाग आलंबन मात्र है, ऐसा यहां पर समझना। विशिष्ट रूप से पूर्ण नहीं है, जो विशेष हुआ घट तो उसको कहा कि वो केवल वाणी से आप बोल सकते हैं किंतु सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो किंतु वो जो भेद तो बताना ही पड़ेगा, कुछ तो है। तो भगवान भाष्यकार वहां पर कहते हैं कि विकारो ही सह, जो घट वगैरह है, शराब वगैरह है, वो विकार है। जैसे जल में जो बुदबुदा उठता है वो क्या है? विकार है। वो जल से भिन्न है
1: ना?
0: नहीं। उत्पत्ति भी जल है, स्थिति भी जल ही, और लय किस में होगा? जल में। तो वो जो बुदबुदा है जैसे वो विकार है, वैसे ये मिट्टी के दृष्टांत में जैसे वो घड़ा है वो विकार है, वैसे यहां दृष्टांत में ये जो नाम रूपादि विशिष्ट जो संसार है वो भी क्या है? विकार है। और ये निश्चित बात है कि विकार सव्यभिचरती, भाष्यकर कहते विकार का व्यभिचार हो जाता। व्यभिचार का अर्थ समझ में आया? वो अपनी बात पर, अच्छा लोक में भी ऐसा कहा जाता है, जो अपनी बात पर पक्का नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? ये व्यभिचारी है। जैसे पति और पत्नी का संबंध है, पति यदि अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य से यदि वो मन लगाता है तो वो किस क्या कहेंगे उसको? व्यभिचारी कहते हैं। क्योंकि लग्न करते समय, विवाह करते समय ये प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं अपनी पत्नी से अतिरिक्त किसी में भी मन नहीं लगाऊंगा, और फिर वो भूल जाता है उस प्रतिज्ञा को, तो फिर उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं। ये व्यभिचारी व्यक्ति है परस्पर दोनों में। तो ठीक ऐसे ही ये जो घट है, घड़ा का जो आकार है, वो भी व्यभिचारी है। वो उनका व्यभिचार हो जाता है कि फूटने के बाद वो नहीं रहता है, उसको फोड़ दो तो नहीं रहता है। इसलिए जो विकार होता है उनका व्यभिचार हो जाता है, वो व्यभिचरती, इसलिए उनको असत कहते हैं या मिथ्या कहते हैं। देखिए सत का कहीं व्यभिचार नहीं होता, उनकी प्रतीति सर्वत्र होगी, और ये आकार प्रकार सर्वत्र नहीं है। कल आपको जैसे बताया था गीता वाक्य में भगवान ने कहा नासतो विद्यते भावो, असत का कहीं भाव नहीं सत्ता नहीं, ना भावो विद्यते सतः, सत का कहीं अभाव नहीं। सर्वत्र सद रूप से परमात्मा की प्रतीति सभी पदार्थों के अंदर अवश्य होती ही है, सबके अंदर सद रूप से परमात्मा विद्यमान है। ये यदि अनुभव करना है तो हम लोग कर सकते हैं कि चाहे जैसे समझ लो संसार की कोई भी चीज लो, पदार्थ लो, तो उसके अंदर हम परमात्मा को है रूप से देख सकते हैं, अस्ति रूप से, अस्तित्व रूप से सबके अंदर परमात्मा एक जैसा प्रतीत होगा, और भाति रूप से और प्रिय रूप से सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। नाम और रूप बदलता रहता है किंतु अस्तित्व नहीं बदलता है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम्। एक मिट्टी का भेला ही ले लीजिए, उसको उठाते कोई पूछे क्या है तो कहते हैं ये मिट्टी का ढेला है बोलेंगे, क्योंकि उसका क्या है? अस्तित्व है, इसलिए है बोलेंगे, नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, किंतु है ऐसा बोलेंगे। मिट्टी का ढेला है, अब फिर वो ढेले को आप जो है तोड़ दीजिए, बिल्कुल बारीक कर दीजिए तो एकदम चूर्ण हो जाएगा, पाउडर बना दीजिए, चूर्ण बना दीजिए, तो वो ढेलेपना था वो खत्म हो गया। फिर जो पूछे कि क्या है तो कहते हैं चूर्ण है ऐसा बोलेंगे, मिट्टी है ऐसा बोलेंगे। आकार बदल गया किंतु उनका जो कारण, उसके अंदर जो अस्तित्व है वो नहीं बदला। मूल जो मटेरियल है वो नहीं बदला। उस समय भी हम उनको है तो कहेंगे, पहले उनको ढीला बता रहे थे, अब उनको कहेंगे चूर्ण है, ऐसा कहेंगे। किंतु है पना अंदर विद्यमान है, वो नहीं बदला। वो जो है उनको कहते हैं सद, सद रूप से परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, इसलिए सदरूपता का कहीं अभाव नहीं होता है। इसलिए सद का कहीं अभाव नहीं है, सर्वत्र वो मिलेगा। और जो असत है, जैसे ढीलापन है, चूर्णपन है, वो सब असत है, उसका कहीं भाव इनकी सत्ता नहीं मिलेगी। उसको आप सिद्ध करने जाओगे तो जैसे समझ लो, अभी आपने वो ढेले के रूप में जिस पदार्थ को देखा था, आपने तोड़ दिया, उसको चूर्ण बना दिया। उसके बाद कोई और व्यक्ति आता है, उनको पूछो कि क्या है, तो वो ढेला है, ऐसा कहेंगे नहीं, वो कहेंगे ये चूर्ण है, उनको चूर्ण दिखेगा। तो जो तीनों काल में एक जैसा रहता है उनको सत कहते हैं, और तीनों काल में जो नहीं रहता है उनको असत कहते हैं। तो वो जो नाम और रूप है वो तीनों काल में नहीं रहा, वो पहले था, फूटने के बाद नहीं रहा। तीनों काल में जो नहीं है उनको असत कहते हैं, और तीनों काल में एक जैसे जिसकी प्रतीति होती है उनको सत कहते हैं। आचार्य गौड़पाद मांडुक्य कारिका में कहते हैं, आदावंती च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जो चीज आदि में नहीं होती है और अंत में नहीं रहती है और मध्य में जो दिखे तो समझ लो कि वो नहींवत है। नहींवत यानी कि नहीं के बराबर है। वेदांत के आचार्य और भी दृष्टांत देते हैं, मृग जल का, वो सुबह में नहीं होता है, आप सुबह में जाएंगे तो वो मृग जल नहीं दिखेगा, दोपहर में दिखेगा किंतु शाम को
1: नहीं दिखेगा,
0: फिर नहीं दिखेगा। तो आदौ यानी सुबह में, अंते यानी शाम को, आदौ अंते च यन्नास्ति, जो आदि में अंत में यानी सुबह में और शाम को जो नहीं है, मध्य में दोपहर में दिखता है, वर्तमाने वर्तमाने पी तत्तथा, फिर वह दोपहर में दिखे तब भी हम उनको मानते हैं कि ये नहीं ही है, नहीं जैसा है दिखे किंतु नहीं है। हम पीने के लिए प्रवृत्त होते हैं क्या? चाहे कितनी प्यास लगी हो लेकिन पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो नहींवत है। ठीक यहां भी ऐसे ही समझाने के लिए ये मंत्र है, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण रूप से वेदांत का सिद्धांत ही भरा है। इसलिए नाम रूप दृष्टि को त्याग करने के लिए ही कहा कि नाम रूप उपाधि विशिष्ट व्यवहारापन्न है, वो भी पूर्ण है किंतु कारण दृष्टि से पूर्ण है, ताकि हमारे नाम और रूपात्मक जो दृष्टि है वो दूर हो जाए। क्योंकि पूर्णात् पूर्ण मुदच्छते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति यानी कि प्रतीति, ठीक है कि नहीं? और मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, जो पूर्ण है उनके अंदर से जो पूर्ण है यानी कि नाम और रूप है, नाम रूप उपाधि को आदाय यानी निकाल लिया जाए।
2: ओम नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Paramashathaya Pratasmaraniyam. Premapuri Ashram ke Adishthata Mahamandaleshwar Shri Swami Premapuri Ji Maharaj तथा परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी श्री महिषानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में नमन करते हुए कठोपनिषद के शांति मंत्र के ऊपर आप लोग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसके दो पादों पर बड़े ही सुंदर भाव कल श्रवण किए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। यहां श्रुति परमात्मा से प्रार्थना करती हैं, हम दोनों माने गुरु और शिष्य, श्रोता और वक्ता, हमारी आप रक्षा करें। और यहां रक्षा का अर्थ है अस्वास्थ्य, अनेकों प्रकार के रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग आदि से रक्षा, और सहनौ भुनक्तु माने इसी प्रकार शारीरिक रूप से हमें अनेकों प्रकार के भाव पैदा प्रदान करे। पालन माने गुणाधान, दैवी संपत्ति का आदान, जिससे कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर अच्छी प्रकार से चल सके। प्रथम पाद का अर्थ था दोषापनयन और दूसरे पाद का अर्थ था गुणाधान, और यही दो चीजें हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। बड़ी बहुत ही व्यापक सोच वाली ये प्रार्थना। और यदि आप आवयोहो का अर्थ व्यापक अर्थ में लेना चाहते हैं तो आप सर्व भी अर्थ उसका कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो संसार है ये द्वंद्वात्मक है। तो यहां पर द्विवचन सहनौ, ये सहनौ द्विवचन है, लेकिन यहां द्विवचन से द्वंद्वात्मक दुनिया आप जहां भी देखते हैं ना, दो हैं स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य, श्रोता वक्ता, तो संपूर्ण दुनिया के लिए आपकी प्रार्थना बन जाती है कि हम सब जो भी हैं स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहकर परमात्मा की आराधना प्रार्थना करें। भगवान हम सबको भोग प्रदान करें। दूसरे पद में भोग की याचना है सहनौ भुनक्तु, और यहां भोग शब्द का अर्थ भी बड़ा मधुर है। सुख दुख साक्षात्कारो नाम भोगः। आप अपने जीवन में सुख और दुख का जो अनुभव करते हैं ना, उसको भोग बोलते हैं। और यहां भोग का अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक जो आहारादि है जिससे आपको सुख मिलता है। आप वस्त्र पहनते हैं, आपको सुख मिलता है। आप भोजन करते हैं, आप अच्छे मकान में रहते हैं, आपको सुख मिलता है। और इसीलिए इसको भोग कहते हैं। और श्रुति यहां पर भगवान से आपके भोग की भी प्रार्थना कर रही है, क्योंकि भोग के बिना जीवन संभव नहीं है। आपका भोजन भी भोग है, आप सुगंध का अनुभव करते हैं वो भी आपका भोग है, आप बहुत अच्छे अच्छे शब्द श्रवण करते हैं ये भी भोग है, और इसके बिना आपका जीवन कैसे संभव है। आप जहां मकान में रहते हैं वो भी तो भोग है, उसके बिना आपका जीवन कैसे संभव है। इसलिए श्रुति आपके जीवन की रक्षा करने के लिए, आपके जीवन का पोषण करने के लिए यहां भोग की याचना कर रही। सहनौ भुनक्तु, और यहां अगले पाद में बहुत सुंदर है, सह वीर्यं करवाव है। हम सबको साथ साथ बलवान बनाए, और यहां बल अनेकों प्रकार का बल है, शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि बल, आत्म बल, अनेकों प्रकार के बल, नैतिक चरित्र बल, क्योंकि बल के बिना हमारा जीवन ये संसार संभव नहीं है। श्रुति भी आपके लिए उद्घोषणा करते हैं ना, नायमात्मा बलहीने न लभ्यो, जो बलहीन है उसको आत्म तत्व उपलब्ध नहीं होता है। बल इस संपूर्ण दुनिया के सृजन का मूल आधार है। आपको एक बात बता देते हैं, आप एक छोटा सा छोटा कीड़ा देख लीजिए आप, और उसके जीवन में भी सृजनात्मकता है, वो भी प्रारंभ करता है अपने जीवन का बहुत छोटे से, और फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो बड़ा बन जाता है। एक अंकुर है, आपने बीज को जमीन में डाला है, और वो अंकुर परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और वो परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया ग्रहण और त्याग है। वहां बहुत सारी चीजें ग्रहण की जा रही हैं, और बहुत सारी चीजें छोड़ी जा रही हैं, और इसी का तो नाम परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब क्या है, यहां सारी दुनिया में जहां पर भी जो भी बदलाव हैं, जहां भी नूतन सृजन है, उसके मूल में परिवर्तन है। और परिवर्तन का अर्थ एक जैसा नहीं होता है, परिवर्तन का अर्थ पुराने को छोड़ना और नए को ग्रहण करना। परिवर्तन के मूल में ग्रहण, स्वीकृति और त्याग है। एक पौधा जब वहां बीज के रूप में होता है तो जमीन के अंदर क्या करता है, अपनी बीज भाव का वो परित्याग कर देता है। वहां अंदर उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, वहां क्रिया। इसलिए आप भागवत में श्रवण करते हैं ना, काल कर्म और स्वभाव, वो द्वितीय स्कंद का प्रकरण बड़ा लोगों को कठिन लगता है, लेकिन बड़ा सुंदर प्रकरण है। वहां सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, काल कर्म और स्वभाव का आश्रय लेकर भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, और वो तीनों बड़े सुंदर शब्द हैं, काल कर्म और स्वभाव। अब आप एक ही जगह पर इन तीनों को दृष्टांत के रूप में समझ लीजिए। आप एक बीज को जमीन में डालिए तो वहां पर परिवर्तन होता है, वो काल और वो वहां पर क्रिया है। जैसे आप बीज डाले और पानी डाले तो उसके बाद बीज वो फूलता है, और फूलने का अर्थ है वहां क्रिया होती है। यदि बीज में क्रिया ना हो तो उसका अंकुरित होना ही संभव नहीं है। पानी उसको क्या करता है, उसको फुला देता है, माने उसमें क्रिया, उसमें प्रक्रिया पैदा करता है। और जब क्रिया होती है ना, तो क्रिया काल सापेक्ष होती है। दुनिया में कोई भी क्रिया काल निरपेक्ष नहीं होती है, काल सापेक्ष। जैसे उदाहरण में आप दूध में आप दही डाल देते हैं, आपको दही की आवश्यकता है, आप चाहते हैं दही को, लेकिन क्या चुटकी बजाते आप दही को पैदा करते हैं क्या? वहां दही बनाने के लिए काल की अपेक्षा है। दही बनाना एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, और वो क्रिया काल सापेक्ष है। आप उसमें दूध डालेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होगा, उसमें क्रिया होगी, उसमें प्रक्रिया होगी और काल के द्वारा फिर वहां पर दही बनेगा। आपकी कोई भी क्रिया काल निरपेक्ष नहीं है। इसलिए नैयायिकों ने एक सुंदर सूत्र दिया आप लोगों को, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रयो मतः। वो कहते हैं कि दुनिया के संपूर्ण पदार्थ, मान एक परमात्मा को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करने वाला आपका काल है। जन्यानाम जनक काल और जगत आश्रयो मतः, जगताम आश्रयो मतः। संपूर्ण जो पदार्थ है ना, पैदा होते हैं काल से और रहते हैं काल में। इसलिए भगवान ने कहा कालोस्मि, ये भगवान ने जो बोला है ना इसीलिए बोला है। आप गीता जी में श्रवण करते हैं ना, भगवान ने बोला है कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूं, काल काल। और काल का अर्थ होता है जो पैदा भी कर देता है और मारता भी है। काल केवल मारता नहीं है, काल पैदा भी करता है और काल मारता भी है। आप बीज को देखना, वो काल के कारण ही वो अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद वो अंकुर पौधे में रूपांतरित हो जाता है और वो पौधे में रूपांतरित होने का अर्थ है उसका अंकुरत्व समाप्त हो जाना। अंकुरत्व समाप्त हुए बिना वो पौधा कभी नहीं बन सकता है। बीज भाव उसका मिटे बिना, बीज भाव उसका मिटे बिना वो अंकुर नहीं बन सकता है। इसलिए आप दुनिया को देखना, दुनिया के पदार्थों को और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को, तो आपका एक दृष्टिकोण है जिसको आप पैदा होना बोलते हैं वो क्या है, आप जिसको मरना बोलते हैं वो क्या है। वास्तविकता है कि आपका वो दृष्टिकोण है। जैसे मान लीजिए आधा गिलास पानी है, तो आप आधा गिलास पानी है तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलने वाले होंगे कि ये आधा गिलास भरा है और बहुत सारे लोग कहने वाले होंगे कि आधा गिलास। तो आप क्या देखते हैं, आप क्या बोलेंगे, वो आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है। और वो भी लोग होंगे ना खाली है, तो आप किसको सही बोलते हैं। आप खाली है ये कहने वाले को सही कहते हैं कि जो भराए कहते हैं उसको सही बोलते हैं। झगड़ा तो यही है। आप जहां भी झगड़ा करते हैं ना, आप कहीं भी अपने घर में झगड़ा तो यही है। आधा गिलास है और उसमें पत्नी कह रहे हैं आधा खाली है और पति बोल रहा है, आप निर्णय कौन करेगा। कोई किसी के मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसको भरा दिख रहा है उसको खाली नहीं दिख रहा है और जिसको खाली दिख रहा है उसको भरा नहीं दिख रहा है। ये तो दृष्टि है। आप जिसको मरना बोलते हैं वो मरना मरना है कि पैदा होना है, आप इसी दृष्टांत में समझ लीजिए। ये दृष्टांत बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है। अंकुर वाला दृष्टांत ना बहुत सुंदर है। आपने बीज डाला जमीन के अंदर और वहां वो बीज अंकुरित हो गया, तो आप बहुत प्रसन्न हुए, अंकुर आ गया, पैदा हुआ, अंकुर पैदा हुआ। लेकिन कोई दूसरा बोले कि तो बीज मर गया, तो आप उसको कौन सी बात सही बोलेंगे, बीज मर गया है कि अंकुर पैदा हुआ है। आप क्या देखना चाहते हैं वहां, आप तो यही देखते हैं अंकुर पैदा हुआ, लेकिन वहां अंकुर पैदा होना बीज के मरे बिना संभव है क्या। इसलिए आप जिसको मरना बोलते हैं ना, वो किसी ना किसी का जन्म होता है और जिसको आप जन्म बोलते हैं वो किसी न किसी की मृत्यु होती है। और ये जो समय है ना, समय ये दोनों को पैदा करता है। अच्छा एक बात मुझे याद आ गई, प्रसंग तो नहीं है लेकिन एक बात याद आ गई। और इस समय ये आएगा कि नहीं प्रकरण, मैं सुनाई देता हूं। आप जिसको जन्म और मृत्यु बोलते हैं अपने अर्थ में, अपने अर्थ में हम पैदा हुए, आप जन्मदिन मनाते हैं, आप पैदा हुए, तो मैं आपको पूछता हूं कि आप अपने कभी जन्म और मृत्यु को देख सकते हैं क्या। न च स्वजन्म नाशम वा द्रष्टुम अर्हति कश्चन, आप अपने न जन्म को देखते हैं और न मृत्यु। आपने जन्म देखा है क्या अपना? आपको सुनाया गया है, आपको कहा गया कि अमुक आपका जन्मदिन है और आप मरेंगे तो आपका मरना आपको मालूम पड़ेगा। जब आप होंगे तो आपका मरना नहीं होगा, और जब मर चुके होंगे तो आप आवाज दे रहे हैं, देवेंद्र सो गए क्या? आपने आवाज लगा दी, ओ नहीं, इसका मतलब आप जग रहे हैं। अच्छा, और आपने ये भी बोला हाँ हाँ मैं सो गया हूं, तो आपने आवाज लगा दी ना कि हाँ हाँ मैं सो रहा हूं, इसका मतलब आपकी आवाज ही सिद्ध करती है कि आप जग रहे। भले ही आप बोल रहे हम सो रहे हैं, लेकिन आप भरोसा करोगे क्या? सामने वाला चीख के गुस्से में भी बोल दे कि मैं सो रहा हूं तो भी हम क्या मानते हैं? अरे नहीं सो रहा है अभी, जगह तभी तो आवाज दे रहा है। आप जब तक जीवन में हैं तब तक मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु आएगी तो जीवन नहीं है। और आपका पैदा होना और ये मरना ना, ये दोनों ये आपका ये है दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है। जहां पैदा होते हैं तो वहां कुछ ना कुछ मरता है, और वहां कोई मरता है तो किसी न किसी को पैदा करके मरता है। इसलिए महात्मा लोग कभी कोई मजे में वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए बोलते हैं, वाह वाह बोले अब मछलियां और गीद बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आप समझ गए। एक महात्मा थे बूढ़े से, ये हरिद्वार की बात, बड़े विरक्त स्वभाव के थे। हम लोग कभी कभी जाते थे तो हमने कहा महाराज बड़े आप बहुत अस्वस्थ हो गए हैं और आपकी उम्र भी बहुत हो गई, बहुत दुख होता है। अरे बोले मुझे दुख? बोले वहां गंगा जी की मछलियां बहुत प्रसन्न हो रही हैं। तो मैं समझाई नहीं, मैंने कहा गंगा जी की मछलियां क्यों प्रसन्न होगी? क्या उसको आप थोड़ा आटा उटा डलवाते हैं क्या? अरे आटा उटा नहीं, बोले अब इसी का आटा बनने वाला है, और इस शरीर को जब गंगा जी में डाल देंगे तो मछलियां भंडारा होगा। बोले मछलियों का भंडारा होगा। आप जहां रो रहे हैं महात्मा जी मर गए और मछलियां वहां भंडारा हो रहा है वहां, तो नारायणी दृष्टिकोण है। जन्म और मृत्यु ये दृष्टिकोण है। आप नए मकान को बना रहे हैं, पुराने को गिरा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? गिरे हुए को देखेंगे कि बने हुए को देखेंगे? और ये उसी दोनों की मूल में आपका काल है। काल जन्म और मृत्यु इन दोनों की प्रक्रिया के मूल में काल है। इसलिए वहां कहा काल, कर्म और स्वभाव। ये कर्म तो आप समझ गए, कर्म माने प्रक्रिया और काल माने समय, और तीसरी चीज एक कहते हैं वहां स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है हर वस्तु में अपना अपना एक स्वभाव होता है। स्वभाव के बिना कोई वस्तु नहीं होती है। आपको यदि दही बनाना है तो आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए। आप जल से बना सकते हैं क्या? आपको तेल निकालना है तो आपको क्या चाहिए? तिल। भैया तेल जो बोलते हैं ना, आप मूंगफली के तेल को भी तेल बोलते हैं, लेकिन वास्तविक तेल का अर्थ यही होता है जो तिल से भाव हो, तेला जो तिल से पैदा होता है ना, उसी को वास्तविक तेल बोलते हैं। आपको यदि तेल चाहिए तो आपको क्या चाहिए? तिल चाहिए। तिल के बिना आप तेल कहां से निकाल? बालू से निकालेंगे? बालू में तेल निकालने का स्वभाव नहीं है। स्वभाव का अर्थ होता है स्वधर्म। स्वभाव का अर्थ होता है स्वरूप। स्वभाव माने उसका अपना निज धर्म। जैसे तिल में तेल निकालने का स्वभाव है, दूध में दही बनने का स्वभाव है, आपके जल में आइसक्रीम बनने का स्वभाव है, ये सारे स्वभाव। और इसी स्वभाव के कारण आप दूसरी वस्तु को पैदा करते हैं। मनुष्य में मनुष्य को पैदा करने का स्वभाव है, पशु में पशु को पैदा करने का स्वभाव। परम पूज्य महाराज श्री कहते चना एक दूसरे चने को पैदा करता और स्वयं मर जाता है, उसमें चने को पैदा करने का स्वभाव है। सारी दुनिया में सभी पदार्थों में जितने कारणात्मक पदार्थ हैं, सब पदार्थों में अपना स्वभाव है। अब आप समझ गए होंगे ये दूसरे स्कंद का जो एक प्रकरण है, काल, कर्म और स्वभाव, और इन तीनों का आश्रय भगवान लेते हैं और संपूर्ण दुनिया को बना देते हैं। लेकिन कुछ कुछ दार्शनिकों ने कहा कि भाई ये सारी दुनिया भगवान बनाते ऐसा क्यों कहते हो। उन्होंने कहा कि स्वभाव और कर्म को लेकर के काल ही सबको बना देता है, सबको काल ही बना देता है, इसलिए कालो ईश्वर बोले। भले काल ईश्वर है, ये काल ये समय वो परमात्मा से अलग नहीं है। तो आप जहां तक दुनिया में परिवर्तन देखते हैं, जहां सृजन और विसर्जन देखते हैं, उसके मूल में परिवर्तन है, और वो परिवर्तन स्वीकार और त्यागात्मक है, छोड़ना और पकड़ने के अर्थ में है। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ पकड़ना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपके पास शक्ति चाहिए। अब एक चौथी भी चीज आपके सामने है, एक बीज है, और उस बीज को छोड़ना है, अपने ऊपर के आवरण को छोड़ना है, और आवरण को बिना छोड़े वह अंकुर नहीं बनने वाला है। लेकिन आवरण को छोड़ने के लिए उसमें ताकत भी तो चाहिए, उसमें ताकत यदि ना हो तो वो बीज कभी अपने ऊपर के आवरण का परित्याग करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए यहां शक्ति चाहिए, शक्ति, यहां बल चाहिए। बल के बिना वो बीज अपने ऊपर के आवरण का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता है। ऐसे आपके ऊपर भी आवरण है, आपको कहते हैं ना, शास्त्र कहते हैं, आपके गुरु कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, आपको उपदेश करते हैं। क्या उपदेश है? सबसे बड़ा उपदेश यही है, तत्वमसी। हाँ, आप वही हैं, वही वही का मतलब आप ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, जो सच्चिदानंद सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता है वो आप हैं। लेकिन वो चैतन्य सत्ता आप हैं, जब आपको कहा जाता है तो नारायण एक उसमें एक भाव है। हाँ, इस बात को थोड़ा सा थोड़ा अलग दृष्टिकोण लेकर के आप थोड़ा सुनेंगे। आप ब्रह्म हैं कि आप में ब्रह्म बनने की संभावना है? हाँ, इसलिए मैंने आपको पहले से सावधान किया। आप ब्रह्म हैं कि ब्रह्म बनने की संभावना है ना? है। अच्छा, एक मैं दूसरा दृष्टांत आपको बता देता हूं। बीज वृक्ष है कि वृक्ष बनने की संभावना है? आप बीज को देखना, वो बीज वृक्ष है कि नहीं। सांख्य शास्त्र ने इसका बड़ा विचार किया है। सांख्य शास्त्र में कहा कि आपका जो बीज है ना, वो वृक्ष है ही। वृक्ष की जो अव्यक्त अवस्था है उसको बीज बोलते हैं, और बीज की जो व्यक्त अवस्था है उसको वृक्ष बोलते। सत्कार्यवाद सांख्यकार कहते, सांख्य दर्शन में कहा ये सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद माने कार्य सत है। उस अंकुर में यदि वृक्ष न होता तो वो कहां से पैदा होता? आप में बीज था, इसलिए कितना आश्चर्य की बात, आप कितने फुट? 5 फुट हैं। आप काले हैं, गोरे हैं, आपकी नाक इतनी लंबी, आपका ऐसा ऐसा नाक होगा, ऐसे ऐसे कान होंगे, ये सारी चीजें आपके वीर्य में छिपा हुआ है, इसकी फोटोकॉपी उसके अंदर है। आपके पास जो बीज है ना, बीज छोटा सा, आपने कभी बीज देखा छोटा सा? वटवृक्ष का बीज, पीपल का बीज बहुत छोटा सा, वृक्ष तो बहुत बड़ा, और उसका बीज कितना छोटा होता है? राई, राई से भी छोटा। हाँ, इतना छोटा, आपको उसको देखने के लिए चश्मा लगाना पड़े, और उतने छोटे बीज में वो सारा का सारा वृक्ष, उसकी उम्र, उसकी कितनी डाले होंगी, उसकी कितनी पत्तियां होगी, किसके उस कितने फूल होंगे, कितना फलेगा, और ये कब मरेगा, ये सारी चीजें, उसका सारा भविष्य, उसकी फोटो कॉपी उसके अंदर है, और वो धीरे धीरे धीरे सब व्यक्त होता जाता है। समय के हिसाब से वो व्यक्त होता है। आप उसके अंदर जितने फूल है वो सब बाहर आएंगे, जितनी शाखाएं सब बाहर आएगी, और जब सारी खत्म होगी तो उसको क्या बोलते हैं? अब आप खत्म हो गया, उसके अंदर का सारा जो था वो अब बाहर निकलना बंद हो गया, माने अरे अंदर जो था वो बाहर हो गया, व्यक्त हो गया। और जब व्यक्त हो गया तो आप क्या कहते हैं, बूढ़ा, ये तो कहते हैं ना। अब वो मरना शुरू कर देता है, तो बीज की जो व्यक्त अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, वृक्ष। और वृक्ष की जो अव्यक्त अवस्था है बीज है। इसलिए आप सांख्यकार को पूछना, सांख्य दर्शन को आप पूछना कि बीज वृक्ष है कि नहीं, बोलेगा हाँ। आप कह सकते कि बीज क्या है, वृक्ष। और वृक्ष को बीज कह सकते कि नहीं, हाँ। व्यक्त हुआ जो बीज उसी को क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। तो ऐसे ही है, आप ब्रह्म है कि नहीं, ऐसे ही है ये, ऐसे ही है। आपको बताते हैं पंचदशी में आभास की सात अवस्था कही गई है, आभास की सात अवस्था, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, शोक ना, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक नाश और आनंदावाप्ति। इसमें जो पहली जो अवस्था है ना वो है अज्ञान की। जीवात्मा में अज्ञान है, अज्ञान, अज्ञान से ढका हुआ है। आप बीज को देखना, बीज को, वहां बीज ढका हुआ है, वहां उसके ऊपर आवरण है। ऐसे इस जीवात्मा के ऊपर आवरण है, आवरण, और वो आवरण क्या है, अज्ञान है ना, अज्ञान। और उसी अज्ञान का आवरण, आवरण अलग और उसका ढकना अलग, उस क्रिया को लिया, प्रक्रिया को लिया, और वो अज्ञान से ढका हुआ होने के कारण उसमें क्या है, विक्षेप। ये सारा शोक, मोह, राग, द्वेष आदि सारा जो प्रपंच है ना, ये सब हमारा विक्षेप है, विक्षेप। इस प्रपंच को विक्षेप बोला है। आप जहां भी संसार में जीते हैं ना, वो सब विक्षेप है। ये तीन जो अवस्था है ना, ये बंधनकारी है, बंधनकारी। अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये जीव की बंधन की अवस्थाएं हैं। और दो जो अवस्था है ना बीच वाली, ये साधन की अवस्थाएं हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ये साधन की अवस्था है।
4: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Ashvasuktam.

भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात। भूमा इस परमात्मा बिकॉज सम्यक् प्रसीदति इति संप्रसाद, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर, एंड अध्युपदेश, दैट इज व्हाट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल्सो, देयरफॉर फॉर दिस रीजन ऑल्सो भूमा इज परमात्मा ओनली, संप्रसाद इज दैट्स सुषुप्त स्थान, सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड देयर। इदं समामनन्ति, दिस इज व्हाट इज द आइडिया, व्हाट अधि उपदेशात मीन्स आफ्टर द आफ्टर दिस दैट्स परमात्मा इज व्हाट इज सीन अस टीचिंग। इदं समामनन्ति, दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज। भूमा भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः इति, भूमानं भगवो विजिज्ञास इति, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्नोति नान्यत् विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति, अन्यत् पश्यति अन्यत् श्नोति अन्यत् विजानाति तदल्पम् इत्यादि। सो भूमा ते तु एव विजिज्ञासितव्यः, देयरफॉर यू हैव टू नो दिस only this bhuma, not anything else. So when the teacher says this, then the disciple asks, bhumanam bhagavo vijignyasa iti, please teach me that bhuma. Then he shows what the bhuma is. Yatra nanyat pashyati nanyat shnoti nanyat vijanati sa bhuma, where he does not see anything else, he does not listen to anything else, he does not know anything else, that is bhuma. When he sees anything else, listens to anything else, knows anything else, that is alpa, that is limited. And in that limited, there is no happiness, itiyadi. In this way, the whole topic of discussion starts. Now, we'll start with the tika here. Narada khalu devarishihi karma vidha karma vidu anatma vittaya shochyam atmanam manyamanaha bhagavantam आत्मज्ञम् आजान सिद्धम् महायोगिनम् सनत्कुमारम् उपससाद। नारद खलु देवर्षि, दिस देवर्षि नारद हु वाज बॉर्न अस ऋषि अस अ डेटी एंड ऋषि एट दैट इज देवर्षि। सो कर्मविद, ही हैज द टोटल नॉलेज ऑफ कर्म। अनात्मवित्तया, ही डस नॉट नो द आत्मा। शोच्यमानम् आत्मानम्, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इमर्स्ड इन दी सॉरो ऑफ संसार। मन्यमानः, ही सीज हिमसेल्फ लाइक दैट, सीइंग लाइक दैट भगवंतम् आत्मज्ञम्, ही गोज टू दिस भगवान हु इज आत्मज्ञम्, हु नोज दि सेल्फ। वेन डिड ही नो दि सेल्फ? आजान सिद्धम्, ही इज बॉर्न रियलाइज्ड। आजान सिद्धम, बाय बर्थ ही इज रियलाइज्ड, बाय बर्थ ही इज नॉलेजेबल। महायोगिनम, ही इज अ ग्रेट योगी। सनत कुमारम, दिस सनत कुमारम उपससाद, ही रीच सनत कुमार, ही रीच ही वेंट टू हिम इन अ प्रॉपर वे। उपसद्य च उवाच, आफ्टर रीचिंग हिम ही आस्क्ड हिम, भगवन अनात्मज्ञम अनात्मज्ञतया अनात्मज्ञता जनित शोक सागर पार पारम उत्तारयतु माम भगवान इति। भगवान, डियर लॉर्ड, आई एम इमर्स्ड इन दिस शोक सागर, दिस सॉरो ऑफ दिस ओशन ऑफ सॉरो, प्लीज पारम तारयतु, प्लीज क्रॉस पुट मी अक्रॉस दिस सॉरो ओशन ऑफ सॉरो इति। तद उपश्रुत्य सनत कुमारेन नाम ब्रह्मेति उपास्व इति उक्ते नारदेन पृष्टम् किम नामनो अस्ति भूयति। Then after listening to his condition, he asked, okay, meditate upon Nama as Brahman. And after giving this upasana, upadesha, Narada asked, is there something greater than this Nama name? Tatra Sanat Kumarasya Pradivachanam Vava Namno Bhuyasi. Then Sanat Kumar again answers, yes, Vak is greater than this name. The word is greater than this name. Tadevam नारद सनत कुमारो यो हो भूयसी प्रश्नोत्तरे वाग इंद्रियम उपक्रम्य वाग इंद्रियम उपक्रम्य मन संकल्प चित्त ध्यान विज्ञान बलात बल विज्ञान बल अन्न अन्न तोय वायु सहित तेजो नभ स्मर आशा प्राणेशु पर्यवसिते। सो from this question and answer, it continues like this, okay, is there something greater, is there something greater, this is a

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन वेद मंत्रम। द टाइटल इज अर्धनारीश्वर स्तोत्रम, प्रेजेंटेड बाय वेदमंत्रम.com टीम। ओम नमः शिवाय।